मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब सोटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 जुलाई 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह की 5:56 और 45 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने

0: सही सामान बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है अमरूद का बाग लगाएं और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम अमरूद का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। अमरूद वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी एवं बलुई दोमट मिट्टी अमरूद की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अमरूद की अनेक किस्में हैं, जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा। इनमें से जो भी प्रजाति का पौधा आपको मिल जाए लेकर के लगा सकते हैं। अमरूद के पौधे लगाने का उपयुक्त समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक है। यह समय है जब आप अमरूद की बाग या अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं। बाग लगाने के लिए पहले खेत को जोतकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद 8-8 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना लिए जाते हैं। ये गड्ढे 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे होते हैं। गड्ढे बनाते समय ऊपर वाली आधी मिट्टी एक तरफ और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे को भरते हैं। ऊपर वाली आधी मिट्टी 30-40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 150 ग्राम लिंडेन चूर्ण, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं और फिर मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। गड्ढे की भराई इस तरह करनी चाहिए कि गड्ढे की मिट्टी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई हो। यदि गड्ढा भरने पर बारिश हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन यदि बारिश न हो तो सिंचाई कर देना चाहिए जिससे गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो ऊपर से थोड़ा मिट्टी डालकर उसे ज़मीन के सतह में कर लेना चाहिए। इसके बाद पौधे को गड्ढे के बीचों बीच लगा देते हैं। पौधे को मिट्टी में उतनी ही गहराई तक दबाना चाहिए जितनी गहराई तक वह पौधशाला में दबा था। रोपाई करते समय पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर सिंचाई कर देनी चाहिए। रोपाई करते समय ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए और बदली हुई है या शाम का समय है तो ऐसे समय में ही रोपाई करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। पौधा लगभग 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिसमें कलम की गांठ अच्छी तरह जुड़ी होनी चाहिए तथा वह किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। पौधों की रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद अमरूद के बाग की देखभाल करते रहना चाहिए। अच्छे फल और अच्छी गुणवत्ता के लिए पौधों को उर्वरक भी देना जरूरी है। 1 से 2 साल पुराने पौधों को 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद,

0: 110 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से देना चाहिए। फलत वाले पौधों को यानी जो 6 साल से ऊपर हैं उन्हें 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 650 ग्राम यूरिया, 950 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। इन उर्वरकों को दो बार में जुलाई माह में और सितंबर अक्टूबर माह में देना चाहिए। गोबर की खाद की संपूर्ण मात्रा जून माह में ही दे दी जाती है। उर्वरकों को पौधों के चारों तरफ तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके फैलाव के नीचे देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक देने के बाद हल्की गुड़ाई करके उन्हें मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। कभी कभी अमरूद के पौधों पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए 450 ग्राम जिंक सल्फेट व 300 ग्राम भुजा हुआ चूना को लगभग 75 लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पर मार्च अप्रैल माह तथा जून जुलाई माह में छिड़काव करना चाहिए। पुराने व फलदार वृक्षों की सिंचाई बरसात के बाद शुरू करते हैं। फलदार पौधों को अक्टूबर से जनवरी माह तक 2-3 सिंचाई कर देनी चाहिए। छोटे पौधों को नवंबर माह से फरवरी माह तक 1-1 माह पर तथा मार्च से जून तक 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई के बाद पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अमरूद की बागवानी करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था अमरूद का बाग लगाएं। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्ति में शक्ति है और शक्ति में विनम्रता, यही हनुमान जी का संदेश है। जब विश्वास मजबूत हो तो हर बाधा रास्ता बन जाती है।

भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नीयत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची।

प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी हैं। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं।

जिंदगी में समस्या देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन भगवान की दृष्टि से बड़ी

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी हरिओम शरण पंडित भीमसेन जोशी, अनुराधा पौडवाल और दीपक चटर्जी की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है अपूर्व विचार शक्ति।
1: उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर ही निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का विस्तार सहज ही ज्ञात किया जा सकता है। मनुष्य को कायर वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो हीन विचार मनुष्य को नीचे गिराएंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नर्क कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वो भी अपने विचारों के कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वो बन जाता है। रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा है, हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फल स्वरूप है। प्रसिद्ध अमरीकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है, जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात कोई सीखी है तो वो है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च और अपार है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर से विचारों की शक्ति और उसके असाधारण महत्व को स्वीकार किया है। जीवन

0: की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं विचारों की प्रेरणा से करते हैं। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं विचित्रताएं भी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब हैं। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नर्क, किसी के लिए संसार अशांति क्लेश पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन। एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा प्रसन्नता सुख खुशी शांति संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा क्रोध क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाई या अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को यंत्रणा समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है, दूसरों को कोसता है, महज अपने विचारों के ही कारण।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था अपूर्व विचार शक्ति। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है इस मौसम में आहार विहार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे।
2: मैं चंद्रशेखर पांडे, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और आज हम लोग ऋतु के अनुसार आहार विहार पर चर्चा करेंगे। आहार और विहार सामान्यतः सभी मनुष्य के स्वास्थ्य और रोगों के लिए जिम्मेदार हैं। पहले हम लोग मानते थे कि जो लाइफ स्टाइल इंड्यूस डिजीज हैं, जीवनचर्या से संबंधित बीमारियाँ हैं, वह काफ़ी कम हैं, लेकिन धीरे धीरे नए शोध से पता चला कि जीवनचर्या हमारे स्वास्थ्य और हमारे रोगों के उत्पन्न होने में बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारी जीवनचर्या सही है तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारी जीवनचर्या खराब है तो हम दवा करते हुए भी पुनः अस्वस्थ हो जाएंगे। प्रत्येक ऋतु में, क्योंकि भारत में अलग अलग समय पर यहाँ के ऋतु में परिवर्तन होता है, उसके तापमान में, उसकी आर्द्रता में, उसके दिनमान में, ऐसी कंडीशंस हैं जिसको हम लोग जलवायु या मौसम कहते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। भारत में प्राचीन काल से ही तीन मुख्य और तीन संबंधित ऋतुएं यानी छह ऋतुएं बताई गई हैं, वर्षा शरद हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म। इसमें तीन आदान काल की ऋतुएं हैं जिसमें सूर्य प्रबल होता है, शरीर से रस, पौधों से रस, भूमि से जल इनका कर्षण करता है, और तीन ऋतुएं ऐसी होती हैं जिसमें ये प्राप्त होती हैं, जिसमें चंद्र प्रधान होता है, शरीर पर जल की, रस की, शरीर में रस की, बल की वृद्धि होती है। तो इस तरह से वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, क्योंकि इस समय ज्येष्ठ और आषाढ़ दो महीने ग्रीष्म के माने जाते हैं, ज्येष्ठ महीना चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य प्रबल होता है, उसकी रश्मियां तेज होती हैं, पृथ्वी से शरीर से जलीयांश का शोषण होता है और धातुएं कम पुष्ट होती हैं, अग्निमंद होती है। इसी तरह से हमारा जो आहार है, अगर आहार के बारे में हम एक कंसेप्ट बनाएं, एक अभिधारणा बनाएं, तो सामान्य कंसेप्ट है कि आहार्यते गलाद अधनीयते इति आहार है। जिस किसी को भी हम आहरण करते हैं, इंजेस्ट करते हैं या गले से हम नीचे उसको लेते हैं, वह आहार है। लेकिन अगर हम कहें कि हम संखिया गले से नीचे ले रहे हैं तो क्या वो आहार है? हम कुचला गले से नीचे ले रहे हैं तो क्या आहार है? अतः परिभाषा दूषित है। तो आहार की जो मुख्य परिभाषा है, जो ऐसे सारे फैक्टर्स जिनके शरीर के संपर्क में आने के बाद शरीर और मन की तुष्टि और पुष्टि हो। तुष्टि से तात्पर्य ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी व्यक्ति को कहें कि आपको हम रसगुल्ला खिला रहे हैं और किसी व्यक्ति को कहें कि आप छेना अलग खा लीजिए, फिर पानी पी लीजिए, फिर चीनी खा लीजिए, तो जितने न्यूट्रिएंट्स थे, जितने कंटेंट्स थे, वो तो मैंने दिया उसको, लेकिन उसकी तुष्टि नहीं होती है। हम अपने न्यूट्रिशन कंटेंट्स को किसी व्यक्ति में उसके मन के प्रसादन के बिना उसको

0: अच्छा लगे बिना अगर दे देते हैं तो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स तो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसकी तुष्टि नहीं होती। तो हमारे यहाँ आहार की दो अभिधारणा है जिसमें हम ऐसी चीज़ों को इंजेस्ट करें, ऐसी चीज़ों को अपने शरीर के पास ले आएं, उनको प्रयोग करें जिनके लेने से हमारे शरीर की भी तुष्टि पुष्टि हो, हमारे मन की भी तुष्टि पुष्टि हो। इसलिए जितना भी कुछ इनटेक लेते हैं जिससे शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है, आहार कहा जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में आहार की क्या अभिधारणा है? सबसे अच्छी अभिधारणा हमारी यह है कि जिस ऋतु में जो चीजें प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं वो वहां का आहार है। देशी काले च, जिस देश में जिस काल में जो चीजें पैदा होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, हमारे यहाँ कुछ आहार विहार की चीजें पैदा हो रही हैं, ककड़ी पैदा हो रही है, तरबूज पैदा हो रहा है, खीरा खरबूज पैदा हो रहा है, अन्य जगह पर नहीं पैदा हो रहे हैं, तो उस देश के लिए उस काल में जो चीजें पैदा होती हैं वो वहां के लिए नेचुरली साथ में होती हैं, नेचुरली सुटेबल होती हैं। और दूसरी चीज होती है कि हमारी अपनी प्रकृति के अनुकूल क्या है। सात्म सर्व प्रकारिण, सभी प्रकार से सात्म हो। ये सात्म का बड़ा लंबा डिवीजन है, यानी हम अपने आहार विहार में चीजें तो ले लेते हैं, लेकिन उस ऋतु के अनुसार जिन चीजों को हम चुनते हैं जो वहां पैदा होती हैं, उन चीजों में से हमको उन्हीं को लेना है जो हमारे अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने रोग व्याधि के अनुसार, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, अपनी पाचन क्षमता के अनुसार उपयुक्त हो, उन्हीं चीजों को उस ऋतु में लेना है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था इस मौसम में आहार विहार। विशेषज्ञ थे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्रवधू की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहु को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थी वाणी जयराम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे पंडित चितरंजन ज्योतिषी। इसी में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे एकल तबला वादन। कलाकार होंगे पंडित पूरण महाराज। और सुबह 7:31 पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे पंडित रविशंकर। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिन 12:30 पर आप सुनेंगे रश्मि चौधरी के गाए भजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10, 7:31 पर रसरंग में, 8:15 पर रसमाधुरी में, शाम 7 और सुबह 10 झनकार में। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। इस विषय पर जानकारी देंगे ताराचंद वैरवा। इसी में श्रोता सुनेंगे हेमंत कुमार श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे सुबह 9:50 और दोपहर 1:45 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज आप गीत संगीत के साथ सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दोपहर 2:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड। महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया आप सुनेंगे दिन 1:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ आज की वार्ता का विषय है बदलते भारत में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगे प्रतिमा पांडे। शाम 5 आप सुनेंगे धरती के गीत, जिसमें आज आप सुनेंगे व्रज के गीत। दिन 12 आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दिन 11 आपके व्हाट्सएप संदेशों पर

आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण किया जाएगा। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय होगा सुबह 7:00। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से बता दें कि रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्न काल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण और रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

गुड मॉर्निंग बनारस। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। दोस्तों, आज है 21 जुलाई वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। तो एक बार फिर से सुबह के चाय के चुस्के के साथ आ गई हूँ मैं, आपके रेडियो दोस्त ललिता, लेकर आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी है दुआ, रब की अता, कह के शुक्रिया जी लो ना। लाए थे जी क्या, ले जाएंगे भी क्या, कह के शुक्रिया जी लो ना। तो दोस्तों यहाँ है कि कुछ ऐसा, हम जिंदगी को जीते तो नहीं है बल्कि उसे काटते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि जीवन जीना एक कला है और ये कला हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही रंगों को हम टटोलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल के पछतावे में उलझे रहते हैं या फिर आने वाली कल की चिंता में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन तो सिर्फ इस पल में है जो अभी चल रहा है। जीवन जीने की पहली कला है वर्तमान में रहना। जैसे कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसे महसूस करें और देखें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें। और जब हम वर्तमान पल को जीना सीख जाते हैं ना, तो तनाव जो आजकल के इस वर्तमान समय में बड़ी आम सी बात हो गई है, वो खुद ब खुद जैसे गायब होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि जीवन में ओझल होने लगता है और काम और आराम, जिम्मेदारी और शौक, अपनों के लिए समय। और अक्सर हम इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं खोने लगते हैं। तो याद रखें कि आप कोई मशीन नहीं है। कभी कभी रुकना, ठिठकना और प्रकृति को देखना बिना जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि काम करना। तो दोस्तों अपनी शांति की कीमत की सफलता पर कभी ना खरीदे। और एक छोटी सी बात, एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप सब भी इसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही ले आते हैं तो थोड़ा सा करके देखिए कितना आराम मिलता है हमें। जैसे आभार प्रकट करना, यानी कि धन्यवाद कहना, भाई जीवन की सबसे बड़ी कला है। हम हमेशा उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, जरा उसके बारे में कभी नहीं सोचते जो हमारे पास है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, जैसे हमारा दिल हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारे लिए

खून पंप करके देता है और हमें जीने में हमारा सबसे बड़ा योगदान करता है हमारा दिल। क्या हमने कभी अपने दिल पर हाथ रखकर उसे धन्यवाद बोला है? और हम सांसें लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि सांस ले रहे हैं या नहीं, फिर भी सांसें आती रहती हैं। तो इसके लिए हर दिन कम से कम सिर्फ एक बार ईश्वर को धन्यवाद जरूर करें। सोचिएगा जरूर, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। और हर दिन बीत जाने के बाद स्वयं का अवलोकन करें कि आज आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, जाने अनजाने में क्या कहीं कुछ कोई गलती तो नहीं हो गई। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशें। जैसे एक छोटे से बच्चे को ही देखिए कभी ध्यान से, उसे बहुत कुछ की जरूरत नहीं होती, बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए होती है जिसमें वो एकदम खुश हो जाता है। तो बस ये जिंदगी भी तो ऐसे ही है, हम बड़े जरूर हो जाते हैं लेकिन जो हम वास्तव में सोचते रहते हैं वो भी हमारे साथ जब हमारी उम्र के साथ है वो भी बड़ा ही होता है। तो चलिए, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस, मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, कभी आप बेवजह खुश हुए हैं? अगर हुए होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम बेवजह खुश होते हैं ना, तो हमें नाचने के लिए ना किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है। मन इतना खुश होता है कि अपने यहाँ भी थिरकने लगता है। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस, और मैं हूँ आपके साथ इस प्रोग्राम में आपकी रेडियो दोस्त ललिता।

और दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम सब चीजों पर भरोसा करते हैं और खुद पर नहीं करते। आइए समझते हैं कैसे। एक बहुत पुरानी कहावत है, यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया आप पर क्यों करेगी भला। ये बात सुनने में कठोर जरूर लग सकती है, लेकिन पूरी तरह से सच है। जब आप आत्मसंदेह से भरे होते हैं और अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरे लोग भी इसे भांप लेते हैं। वे आपकी झिझक को इस बात के प्रमाण के रूप में देखते हैं कि आप अभी बड़ी जिम्मेदारियों या फिर सफलता के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके विपरीत, जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो लोग आपके दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होते हैं और आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। मानसिकता में छोटे छोटे से बदलाव आपके आत्मसम्मान की भावना को भी विकसित करता है। तो कुछ हो ना हो, अपना आत्मसम्मान और अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि आपकी सबसे पहले दोस्त आप खुद होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं एक ऐसा इंसान हमें मिल जाए जो हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी बदल दे। तो एक इसके लिए भी एक बहुत छोटा सा उपाय है, वो ये कि आज ही आप अपने घर में जाइए और शीशे के सामने खड़े हो जाइए और वो इंसान ना आपको आज ही मिल जाएगा। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस। चलिए एक नजर में देख लेते हैं इतिहास में क्या कुछ रहा आज के दिन में खास।

दोस्तों आज है 21 जुलाई, तो आइए एक नजर में देखते हैं कि आज का दिन इतिहास के दिन में कैसे दर्ज हुआ। तो भाई आज नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, और ये जो घटना है ये है वर्ष 1969 की, और वर्ष 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी आज के दिन। वर्ष 2011 में नासा ने अपना पहला आखिरी अंतरिक्ष शटल मिशन पूरा किया था। वर्ष 2011 में आज के दिन 1963 में काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था आज के दिन। और एक और जरूरी बात, 21 जुलाई को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थी इतिहास में आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। और अब आइए एक नजर में देख लें कि क्या है हमारे शहर बनारस की खबरें। तो आपको बताएं कि वाराणसी जिले में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक को लेकर कई हैरत लोग आ गए हैं। सोमवार को 2.25 साल का एक बच्चा कोरोना संक्रमित मिला है। आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश से शुरू कोविड का संक्रमण अब धीरे धीरे कई जगहों पर फिर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक बनारस में पिछले 20 दिन में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो भाई एक बहुत मुश्किल दौर से हम सभी गुजरे हैं, तो आप सब भी अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात के समय में अनेकों बीमारियां आती हैं जो संक्रमित होती हैं, संचारी रोग जैसे होते हैं एक से दूसरे में फैलने वाले। तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, और जब भी किसी को सर्दी खांसी या फिर जुकाम लगे तो थोड़ी सी दूरी उससे बना के रखें। चलिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। अपने आपको बताएं कि गंगा में बाढ़ के दौरान 84 घाटों का आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है। करोड़ों की लागत से लगभग 35 प्रमुख घाटों पर प्लेटफॉर्म और रैंप का निर्माण कराया जा रहा है, और इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ के समय श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों का आवागमन सुगम बनाए रखना, ताकि जल स्तर बढ़ने पर भी घाटों के बीच संपर्क जो है ये बाधित न हो। और आपको बताएं कि आगामी त्योहार के मद्देनजर शहर में नो एंट्री के समय बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को हाईवे और रिंग रोड पर ही सख्ती से रोक दिया जाएगा। कॉलोनी समेत अन्य मार्गों से शहर के अंदर आने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। ऐसे मार्गों को चिन्हित किया जाएगा जहां से कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके। केवल उन वाहनों को शहर के अंदर आने की अनुमति होगी जिनके पास विशेष अनुमति होगी। उन्हें रात में बड़े वाहन लाने और नो एंट्री से पहले शहर से बाहर निकलने की आवश्यकता होगी। और आपको बताएं कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भोर में 5 बजे से रात 11 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगी, और रात 11 बजे से भोर 5 बजे तक बड़े वाहनों के आने पर छूट रहेगी। इस दौरान ट्रक, डंपर, ट्रेलर समेत अन्य भारी वाहन माल वाहकों को शहर में आने की अनुमति मिलेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि सावन का महीना बस है शुरू होने वाला, और हम सभी जानते हैं कि ये पूरे दुनिया में हमारे सिर्फ काशी में होता है, क्योंकि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को

देश और दुनिया भर से अनेकों लोग आते हैं। क्योंकि ये जो नगरी है ये देवाधिदेव महादेव की है। और काशी के बारे में अगर बात करी जाए ना, तो एक प्रोग्राम क्या, एक पूरे दिन भी अगर प्रोग्राम किया जाए तो बातें थोड़ी छोटी हो जाएंगी। क्योंकि ये जो शहर बनारस है ना हमारा, ये पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और ये एक ऐसा शहर है जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे कि सुबह सुबह जब आप घाटों पर घूमने जाते हैं, तो जो सुबह का सूरज की पहली किरण होती है, माँ गंगा की लहरों पर जब पड़ती है ना, तो कैसा स्वर्णिम सी आभा ये जो बिखेरती हुई ना, हम सभी के मन को स्पर्श करती है। और आपने भी ध्यान दिया होगा कि ये जो गंगा घाट पे ये जो चंद्राकार बने हुए जो रूप हैं, ये भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमान की तरह से जैसे लगते हैं। तो भाई हमारा बनारस है बहुत खास, और दुनिया भर से तभी तो लोग यहाँ जरूर आना चाहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, काशी, काशी शब्द यानी काश से बना हुआ, और काश शब्द का अर्थ है प्रकाश, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, और वो है हमारा काशी। दोस्तों अब इस प्रोग्राम में वक्त है मेरे चलने का, तो चलते चलते एक दो छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होती है, और ये कहावत भी सदियों से चली आ रही है। और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा हो, हमें इस पर भी काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें पर्याप्त नींद और आराम की भी बहुत बहुत ज़रूरत होती है। देखिए, समय परिवर्तनशील है, कब गर्मी थी अभी बरसात का मौसम आ गया है, और बारिश इतनी अच्छी लगती है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे बारिश अच्छी ना लगती हो। लेकिन एक बात जो है वो ज़रूर समझें कि प्रकृति इस पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे सुंदर और अनमोल वरदान है। प्रकृति कोई घूमने की जगह तो नहीं है, बल्कि ये हमारी जननी है जो हमारा पालन पोषण करती है। तो हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि हम अपनी प्रकृति का ख्याल रखें। कम से कम अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो ये गंदगी ना फैलाएं और जगह जगह इधर उधर ना थूके। और अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग टू व्हीलर से चलते हैं तो फ़ोन हाथ में चलाते हुए चलते हैं। तो भाई, ये जो हमारा जीवन है ना, ये बहुत कीमती है, इसे ईश्वर ने इतने समय से बनाया है, तो कृपया ईश्वर का अनादर ना करें, इसे अपना ख्याल ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके बच्चे हैं, तो हमें इसका ख्याल ज़रूर रखना है। तो दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं तक, बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। और अब चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल है। और अभी के लिए यहीं तक, आपसे मिलेंगे दिन में 2:30 पर सुहाने तराने के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त

0: होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा। अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कल विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। एक रिपोर्ट।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। श्री मोदी ने सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
4: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है और मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तरफ पर, और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बारिश से पैदा हुई सूखे की समस्या और कुछ स्थानों पर अतिवर्षा से संभावित बाढ़ की चुनौती को लेकर कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़

0: हो या सूखा। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसल और आम जन की आजीविका की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री योगी ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले की परिस्थितियों के अनुरूप ही राहत और बचाव की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जन कल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए युवाओं से कम एक कौशल सीखने की अपील की।
1: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प लें कि कम से कम एक कौशल सीखकर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश बल्कि $1 trillion अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा। श्री योगी ने युवाओं को याद दिलाया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित होने की राह पर अग्रसर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता,
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में SIT के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जाँच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जाँच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन कराया जाएगा।
3: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, महंगाई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कांवड़ के श्रद्धालु हैं उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ।
0: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में UP T20 लीग के Season 4 के टिकट लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको DSP और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।

राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण आज वहां कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा, अब 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा तथा कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सितार वादन। आज के कलाकार हैं पंडित रविशंकर, राग है आस भैरव और इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित कुमार बोस।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सितार वादन। आज के कलाकार थे पंडित रविशंकर, राग था आस भैरव और इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित कुमार बोस। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
4: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के

0: उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में

0: भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दिक्के ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेज

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपियाई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंटी इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपियाई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वज़ीर आज़म क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुँचीं। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद वसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज MV गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने ये बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकल व हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिल मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंबों से ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉ.एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडवा

0: बार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाज़ा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़राअत, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग के आगाज़ में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मज़ीद तकवीत देगा, जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क्लीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के जरिए वोट डालने के अमल को मजीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अल-अक़वामी इदारे IIIDEM और बैन अल-अक़वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी जिलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधही की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ

0: करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, एनएचपीसी के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल हैं। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाद हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफवर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जांच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने ये तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
3: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिये अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मधुरिमा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे एक छोटी सी संदेश के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात कुछ पल अपने लिए, इस विषय पर बातचीत करेंगे आधा घंटा आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब अपने परिवार काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना भी भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी रुक कर, मुस्कुरा कर और खुद से दो बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज का ये आधा घंटा हम सभी के नाम है, अपने लिए, अपने मन के लिए। वक्त निकालिए ज़रा खुद से भी मिलने के लिए। जिंदगी हर रोज सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं होती। कभी मुस्कान बनकर लीजिए, क्योंकि खुश रहना भी एक इबादत होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, ज़िंदगी में हर सफ़र बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सफ़र में मंजिल जितना ज़रूरी होता है, उतने ही रास्ते का आनंद लेना भी ज़रूरी है। छोटी छोटी खुशियाँ, एक कप चाय, शाम की ठंडी हवा या अपनों की मुस्कान, यही तो ज़िंदगी की असली दौलत है। थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा गुनगुनाइए, दिल पर जो बोझ है उसे हल्का बनाइए। दुनिया के लिए बहुत जी लिया, आज कुछ पल खुद के लिए भी बिताइए।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: आप सुन रहे हैं मधुरिमा कार्यक्रम अपने रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ। दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। अगर कल अच्छा नहीं था तो आज बेहतर हो सकता है। उम्मीद का दीपक हमेशा जलाए रखिए, क्योंकि हर सुबह नया उजाला लेकर आती है और हर शाम नया सबक सिखाती है। जो मुस्कुराकर हर दिन जीना सीख जाए, जिंदगी उसी पर मुस्कुराती है।

दोस्तों, जो हमारे बस में नहीं है उसकी चिंता में अपनी मुस्कान मत खोइए। जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला शायद उसके पीछे भी कोई बेहतर वजह होगी। जो बीत गया उसे याद कर रोना कैसा, जो आने वाला है उससे डरना कैसा। आज का दिन आपका है, इसे मुस्कुराकर जीना सबसे अच्छा।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: दोस्तों, ज़िंदगी कभी खुशी देती है, कभी गम, लेकिन दोनों ही हमें मजबूत बनाते हैं। रिश्तों की कद्र कीजिए, अपनों को समय दीजिए और सबसे ज़रूरी खुद को भी प्यार कीजिए, क्योंकि खुद से प्यार करना सीख लीजिए, हर दर्द को मुस्कुराकर जी लीजिए। जब अपना साथ मिल जाता है, हर सफ़र आसान हो जाता है। आज के इस सफ़र का समय अब यही समाप्त होने को है। उम्मीद है कि आज के इन गीतों, बातों और शायरियों ने आपके चेहरे को थोड़ा सा मुस्कान दे दिया होगा। याद रखिए, दुनिया की हर जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अपने लिए भी रोज़ कुछ पल ज़रूर निकालिए। वही पल आपको नई ऊर्जा देंगे और जीवन को खूबसूरत बना देंगे। रुकिए ज़रा, मुस्कुराइए ज़रा, ज़िंदगी को करीब से देखिए ज़रा। हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए भी रखिए, यही पल आपकी सबसे खूबसूरत पूंजी बन जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी मधुरमा के एक नए और दिल को छू लेने वाले विषय के साथ। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी को कार्यक्रम मधुरमा समाप्त करने की। नमस्कार।
1: कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम रिले करेंगे अपने

0: देवरिया और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का।
1: एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साहू द्वारा नगर पंचायत बरियारपुर क्षेत्र में पौधरोपण कर किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्थलों समेत सरकारी भवनों के परिसरों में पौधे लगाए गए। अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने गांव, खेत, बागीचे, मंदिर, तालाब, अमृत सरोवरों एवं सड़क के किनारे आदि सजीव वृक्ष लगाने की अपील की। वृक्षारोपण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं अंत्योदय कार्ड धारकों में पौधे भी वितरित किए गए। इसके अलावा जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालयों, चरागार भूमियों एवं तालाबों के तटबंधों सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी भूमियों पर वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माह के नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के जिले के नामित नोडल अधिकारी रविन्द्र कुमार प्रथम तथा जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बैतारपुर विकासखंड के सृजन ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण करते हुए आम जन से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उसका संरक्षण करते रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग के सभी परिसरों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन आदि पर पौधरोपण किए। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने महर्षि देवरावा बाबा सोसा से राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ट्रामा सेंटर चालू करने का भी निर्देश दिया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के लिए जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पारदर्शी पूर्वक तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी पूर्वक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में चयनित आकांक्षी ब्लॉकों को निर्धारित पैरामीटर के तहत संतुलित करने के लिए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के डिजिटल हाजिरी कक्षा में निपुण तालिका, शिक्षक संदर्शिका, पठन पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का व्यापक व्यवस्था करते हुए पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा
2: सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीके की योजनाएं संचालित की जा रही है। शिक्षा विभाग में अब जुलाई महीने में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पे बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया जाए। उसके साथ साथ बच्चों को निपुण भी बनाया जाए, उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों में और स्ट्रेंथन करने के लिए भी फोकस किया जा रहा है।
1: जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ समय पूर्व सभी तैयारियों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़ के मद्देनजर सभी आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बाढ़ विभाग व अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर रखते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन करें। मार्ग दुर्घटना में हो रही जनहानि को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा की। दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि न हो इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं। बार बार सड़क दुर्घटना होने वाली जगहों को चिन्हित करते हुए वहां पर आवश्यक संकेतक तथा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए। सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविर का आयोजन जिले के विभिन्न तहसीलों में किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पात्र लाभार्थियों में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र व अन्य उपकरण वितरित किया गया। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व विभागीय योजनाओं की प्रगति का प्रतिबिंब है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, हेपेटाइटिस बी आदि के टीकाकरण, आशाओ का लॉजिस्टिक वितरण, BHND सत्रों तथा मिशन डिलीवरी सहित प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान का क्रियान्वयन पूरी तरह से किया जा रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है तथा लक्षणयुक्त रोगियों को चिन्हित करते हुए उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इलाज कराने का सलाह दिया जा रहा है। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी सुधाकर

0: मणि ने बताया कि
1: आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घरों के भ्रमण कर लक्षण युक्त रोगियों को चिन्हित कर रही हैं तथा कुपोषित बच्चों का भी सूची तैयार किया जा रहा है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर और अन्य आगे की जांच के लिए संदर्भित किया जाता है।
2: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
3: जनपद कासगंज में 12 जुलाई को वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव एवं नोडल अधिकारी राजेश कुमार ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधे लगाए। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत जनपद कासगंज को 26,51,800 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है जिसे जन सहभागिता से पूरा किया जाएगा। वक्ताओं ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। जनपद कासगंज में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के दौरान जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्षा जल संचयन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा भूजल पुनर्भरण जैसे प्रभावी उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य भूजल संरक्षण, उसके नियोजित विकास, विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनियंत्रित दोहन पर रोक लगाने के प्रति आम जन को जागरूक करना है। इस वर्ष भूजल सप्ताह की थीम है जल संरक्षण का करें संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। अभियान के अंतर्गत जनपद की सभी ग्राम पंचायतों, विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में 7 दिवसीय सघन जल संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं। जनपद वासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने तथा भूजल संवर्धन और जल संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की जा रही है। इस विषय पर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्त्री पारुल बंसल ने कहा,
4: मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करें, अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकें और अपने आसपास जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा रखने में अपना योगदान दें।
3: जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। 18 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर में धारा 138 NI एक्ट से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया जिसमें 4 मामले मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। कासगंज में आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा गंगा नदी के लहरा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, खतरे के संकेतक, नावों, गोताखोरों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ एवं रबी वर्ष 2026 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज अभियान तथा जनपद स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन पात्र किसानों के पास अभी तक KCC नहीं है उनकी पहचान कर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, बैंक शाखाओं, पैक्स, FPO और कॉमन सर्विस सेंटर के समन्वय से विशेष अभियान चलाकर उन्हें KCC से जोड़ा जाए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोली सोनकर पुत्री कल्लू सोनकर ग्राम बच्छाओं रोहनिया वाराणसी से दिनांक 27 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे से घर से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 20 वर्ष, लंबाई 4 फीट, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रोहनिया को सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशी गर्ग पुत्री श्री गोविंद प्रसाद गर्ग मलहिया रमना सामने घाट लंका वाराणसी से दिनांक 26 मई 2026 दिन मंगलवार से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। थाना मड़ुआडी कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार बबीता कुमारी पुत्री पांचूराम निवासी राजभर बस्ती लखनपुर भुल्लनपुर से दिनांक 7 मई 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 22 वर्ष, लंबाई 4 फीट 8 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ुआडी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शारदा प्रसाद पुत्र स्वर्गीय बुधई मड़ुआडी डिहवा वाराणसी रविदास मंदिर से दिनांक 28 मई 2026 सुबह 8 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 58 साल, रंग सांवला। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना मड़ुआडी को सूचित करें। थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पूनम पुत्री लोकनाथ भूसा मंडी मधुबन पंचवटी तिराहा रामनगर वाराणसी से दिनांक 25 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 27 वर्ष, लंबाई 4 फीट 11 इंच, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर वाराणसी को सूचित करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाओ, रोज सफाई करना न भूल पाओ। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ के।

0: क्योंकि रामपुर जो है एक नवाबी शहर गुजर चुका है। ये वो दौर था कि जब मुगलिया दौर का जवाल हो रहा था, तो जाहिर है कि इसका असर दिल्ली और लखनऊ दोनों पर ही असर आ रहा था। उस वक्त रामपुर के जो नवाब थे, अदब नवाजी की रिवायत को जिंदा रखे हुए थे। यहाँ के नवाबीन, नवाब यूसुफ अली खान साहब और नवाब कल्बे अली खान के दौर में रामपुर उर्दू अदब का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ था। हालांकि रामपुर की उर्दू कोई अलग जुबान नहीं थी, बल्कि यहाँ दिल्ली की सादगी और लखनऊ की नफासत का एक हसीन इम्तिजाज था। इसीलिए रामपुर को अदब का तीसरा स्कूल भी करार दिया गया। सामिन, आज हम इन तीनों मरकजों की उर्दू और उनके बाहिमी ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे आज की इस मुबाहिसे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब और प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में समीम कल्ब से खैर मकदम है। जुबान, जो कि एक मौसर जरिया माना जाता है हमारे माफिल जमीर की अदायगी का, चाहे वो कोई भी जुबान हो, तमाम जुबानों का यही काम है, मगर उर्दू जुबान सबसे मुख्तलिफ है, वो क्यों? आसिफ हुसैन साहब से।
1: बहुत अच्छा सवाल किया आपने मोहतरमा। उर्दू ज़बान मुख्तलिफ क्यों है? देखिए, ख़ास बात उर्दू के हवाले से जो जग जाहिर है, छुपी हुई नहीं है, वो ये है कि जितनी ज़बानें हैं, अलग अलग इलाकों में बोली जाने वाली ज़बानें हैं, अलग अलग कौमों की ज़बानें हैं, उर्दू जो है वो इन तमाम ज़बानों का एक हसीन इम्तिजाज है, एक हसीन गुलदस्ता है।
0: बेशक
1: लिहाजा इसमें जो चाशनी हम महसूस करते हैं वो दूसरी ज़बानों में हमें नहीं
0: नहीं
1: मिलती है।
0: मिलती।
1: इसमें हम अपने माफ़ी ज़मीर को अच्छी तरीके से अदा कर पाते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात यह है कि इसमें क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता होने की वजह से इसमें हमें जो कहना चाहिए बाहमी हम मानी अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं।
0: जी
1: इसी वजह से गालिबन गालिबन के यकीनी तौर पे जो लोगों को ज़्यादा मिठास महसूस होती है, शीरीनी महसूस होती है और लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, या यूँ कहिए आमतौर पर लोग बोलते हैं वो उर्दू ही होती
0: उर्दू में
1: है,
0: ही बात
1: उर्दू में
0: करते
1: ही
0: हैं।
1: बात
0: जी
1: करते हैं हम, तो यही वजह है कि ये ज़्यादा मकबूलियत इसको हासिल है। जैसे बात चल रही है यहाँ पर के मुख्तलिफ स्कूलों की है,
0: जी
1: तो उन सब का हमें यहाँ पर वो स्कूल जो है वहाँ की जो तहजीब सकाफत वगैरह है
0: जी
1: वो सब ने इसको मुतासिर किया है
0: जी
1: और उसके से मुख्तलिफ लहजे वजूद में आते हैं मकबूल
0: सबसे
1: ज़बान।
0: अलग है और मुख्तलिफ है।
1: जी
0: आबिद साहब का ताल्लुक लखनऊ से है और आप माओ के हैं, तो मेरा ये सवाल है कि लखनऊ, दिल्ली और रामपुर की जो जुबानें हैं, उनके जो बाहिमी ताल्लुकात हैं, उनमें क्या फर्क है?
2: असल में दिल्ली 18वीं सदी में जिस ज़बान को दिल्ली ने जन्म दिया, और अभी जैसा कि डॉक्टर आसिफ साहब कह रहे थे कि मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ कल्चर के संगम से जो ज़बान वजूद में आई वो उर्दू ज़बान बन के हमारे सामने आई, और उर्दू ज़बान की खसूसियत ये रही है कि इसे आवाम के साथ साथ खवास में भी जो है मकबूलियत रही,
0: बिल्कुल
2: और इसीलिए इस ज़बान को उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है। उर्दू मुअल्ला इसलिए कहा जाता है कि मुग़ल शहनशाहों ने, मुग़ल जो है या मुग़ल दरबार में जो लोग थे उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट किया और आवाम में भी जो है इसकी मकबूलियत थी। ऐसा नहीं है कि उर्दू जो है दिल्ली में जो है पनपी, इससे पहले जो है दक्कन में कुली कुतुब शाह या दूसरे जो है फरमानरवाओं ने जो है इसको जो है आगे बढ़ाया, और गंगा जमुनी तहजीब जो इसकी ख़ास जो है पहचान है उसके ज़रिए इसने समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है फूलों के गुलदस्ते की तरह से जो है इसका वजूद है, इसकी आबादी है, इसमें ऐसी ज़बान बोली जानी चाहिए जो हर तबके को, हर इलाके के रहने वालों को मुतासिर कर सके। और
0: बेशक
2: उर्दू ज़बान के अंदर ये खूबी रही कि उसने जिस ज़बान का अच्छा लफ्ज़

0: था, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे कबूल कर लिया। और उसने ये खास जो है बात रखी उसके चाहने वाले मानने वालों ने कि किसी भी जबान के सामे जो है जिस लफ्ज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है और अपने माफी ज़मीर को अदा कर सकता है वो जो है उर्दू जबान जो है हो जाएगी। और इसीलिए मैं यहाँ पे जो है बात करूँगा, जैसे दहलवी जबान की बात होती है, दहलवी स्कूल की बात होती है, और फिर उसके बाद लखनवी स्कूल बना, फिर उसके बाद उसी दहली और लखनऊ से आए हुए तमाम उलमा, शुअरा, उदबा ने, नवाबी ने, रामपुर ने जो है उनकी जो हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, उसकी वजह से यहाँ पर उर्दू का जो एक अलग जो है लबो लहजा बना वो जो है पूरी दुनिया में जो है मशहूर हुआ। दक्कन से होती हुई दिल्ली आई और दिल्ली में जो है वो सज संवर करके अपनी एक शनाख्त कायम कर चुकी थी। अब लखनऊ के जो है शोहरा के अंदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम अपनी शनाख्त जो है कैसे कायम करें। लखनऊ की जबान में आई
1: जी
0: वो यहाँ पर सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि यहाँ के शुअरा ने हमारे उस अदबी दायरे को वसअत दी, और वसअत इस तरह के से दी कि दिल्ली का एक बड़ा शायर, जो गजल का बड़ा शायर होते हुए कसीदे का बड़ा, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं हुई जो हैसियत आकर के उसकी लखनऊ में हुई। इसलिए कि वही दिल्ली के शुअरा, चाहे वो मीर हों या मुसफ़ी हों या आपके सौदा हों, वो सब हिजरत करके लखनऊ गए। और इन्हीं के तरबियत याफ्ता शुअरा, चाहे वो
1: पूरे
0: आतिश की शक्ल
1: हिंदुस्तानी
0: में रहे
1: जी फैल
0: हों
1: गए।
0: या और भी दूसरे, लखनऊ में भी जो बड़े शुअरा हैं वो इन्हीं के तरबियत याफ्ता। अब जो है लखनऊ के सामने ये थी कि लखनऊ ने ये कहा कि देखिए हम दिल्ली से आए हैं, हम जो है क्या शनाख्त करें। तो एक बड़ी सिन्फ जो है वहां पे वजूद में आती है और वो मसनवी है।
1: जी
0: मसनवी हमारे अदब की जो दो बड़ी मसनवियां हैं उसी लखनऊ में लिखी गई, चाहे वो सहरुल बयान हो या जो है गुलजार नसीम हो। उसके अलावा एक ऐसी सिन्फ जो रोने रोलाने के लिए मशहूर थी, उसने जो है वहां पर अदबी शनाख्त जो है कायम की। इसलिए कि
1: बिल्कुल
0: अब तक जो है लखनऊ में यकीनन सौदा भी जो है मरसिए के शायर हैं, मीर भी जो है मरसिए के बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी शनाख्त जो है वो एक गजल गो के शायर की हैसियत से है, एक जो है आपके कसीदे के शायर की हैसियत से है। लेकिन मरसिए को जो अदबी रंग, या कहना चाहिए अदबी जो उफुक पे जो है एक तरह से सूरज की तरह चमकाया, वो खलीको ज़मीर ने और बाद में जो है अनीसो दबीर ने जो
1: दबीर ने
0: उसे
1: किया।
0: समझाया। और यही वजह है कि वहां पर जो है जहां अभी जबान के बारे में गुफ्तगू नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू जो है सौदा ने और ने जो है मीर ने की, खान आरजू ने थोड़ी सी गुफ्तगू की, वो भी जो है फैजाबाद में जाकर के कर रहे हैं। और इस तरह की शायरी कि बस जो है लफ्जी बाजीगरी का नाम है, यानी
1: मगर
0: यहां
1: उसके
0: पर
1: बरक्स उन्होंने
0: हाँ
1: ये दिखा
0: उसके
1: दिया
0: बरक्स जो
1: कि
0: है इन्होंने
1: ये जी
0: हाँ
1: कि सिर्फ एक की नहीं बल्कि
0: हाँ
1: आलम की है जुबान। और
0: और
1: आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। गंगो जमन की ये तहजीब और जो ये जुबान है सिर्फ एक मजहब की नहीं बल्कि पूरे आलम की है। आसिफ साहब आप क्या कहेंगे कि हम ये देखते हैं कि जहाँ हमारा इलाका या खित्ता कोई भी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से आगे बढ़ता है तो वहां पर लहजा, जबान सब कुछ बदल जाता है। इसके पीछे क्या असरात हैं?
2: जहाँ तक लहजे की है,
1: जी
2: जुबान तो आमतौर पर नहीं बदलती है, लहजा बदलता है। और लहजा जो है वो किसी इलाके की तहजीब, वहाँ की सकाफत से मुतासिर होता है, वहाँ के जो अदबी सरपरस्तियाँ उसे हासिल होती हैं उससे मुतासिर होता है। मसा जैसे रामपुर को ले लीजिए आप, यहाँ पर नवाबीन की सरपरस्ती हासिल, तो यहाँ का लहजा जो है वो यहाँ की सकाफत से मुतासिर है। हम जब लहजा की बात करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, जुबान वही है दिल्ली में बोली जा रही है,
1: जी
2: जुबान वही लखनऊ में बोली जा रही है, बोली जा रही
1: देखिए
2: है।
1: उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें हम ऐसे आदाब और अलकाब के साथ कहते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी को अगर जनाब भी कहेंगे तो जनाबे आली कहेंगे,
0: जवाली
1: तुम की जगह आप कहेंगे, लेकिन दीगर जुबानों में ऐसा नहीं है।
2: जी, देखिए इसमें जो इसको यानी कि नफासत के जरिए में इसको रख सकते हैं चीज़ को, हम जो हम एक अलकाब को जनाब कहने से बात खत्म हो जाएगी, एक
1: जी
2: जनाब आली हम कह रहे
1: वो
2: हैं
1: क्यों कहेंगे
2: नहीं।
1: जी, बात
2: तो
1: तो इससे भी पूरी
2: ये
1: हो
2: चीज़
1: जाती
2: ये चीज़
1: है।
2: जो यहाँ आई वो
1: जी
2: ये जो असर है ये आलम लखनऊ भी तहजीब का असर है,
1: जी
2: तो लहजे का असर यहाँ हमें मिल रहा देखने के
1: जी
2: लिए, ये भी लहजे का ही कहीं ना कहीं असर है
1: यानी
2: इसका
1: कहीं ना कहीं लखनऊ से हमारा जुड़ाव होता
0: जी।
1: ही बात
0: देखिए मैं
1: है।
0: बताऊं, लखनऊ ने अपने आप को देहलवी या रुहेलखंड के असरात से इस तरह अलग किया कि यहाँ पर जो हमारा मगरबी उत्तर प्रदेश या दिल्ली का जो लबो लहजा है
1: जी
0: उसमें तू और तुम की बात है। तू जो है छोटे को कहा जाता है, तुम जो है बड़े को कहा जाता है, लेकिन लखनऊ ने जो है उसको जो है अपने आप को अलग किया, उसने जो है तुम जो है वो छोटे को और बड़े को जो है

0: आप।
1: जी
0: दूसरी चीज यह है कि वहां जो बोलने का तरीका है, यानी छोटों को भी मुखातब करना, सामईन को मुखातब करना, बंदा परवर, बंदा नवाज,
1: बिल्कुल
0: जनाबे आली,
1: जी जी
0: आप जो है सिर्फ जो है यहां कहेंगे कि रोटी खा लो, खाना
1: जी
0: खा लो,
1: खाना खा लो,
0: लेकिन वहां जो है वो
1: नोश फरमा
0: नोश
1: लीजिए।
0: फरमाइए,
1: जी
0: दाम हाजिर है,
1: जी
0: आप जो है दस्तरखान पे तशरीफ
1: जी
0: रखिए। तो ये चीज जो है लखनऊ ने जो नफासत जो है, जिसका जिस
1: जी
0: पे जो
1: जो
0: जी जी
1: नफासत है, शाइस्तगी है
0: जी जी
1: और जो नजाकत है, वो शायद लखनऊ की ही पहचान
0: जी
1: है।
0: जी
1: लखनऊ की
0: अब मैं
1: पहचान
0: एक
1: है।
0: बात और कहना चाहूंगा कि ये तीनों दबिस्तान था मेरे उस्ताद जो है अली जवाद जैदी मरहूम ने, इसलिए कि जहां भी मरकज हैं वो जो है दबिस्तान हो सकता है। और इसी के तहत मैंने दो किताबें लिखी। लखनऊ के बगल में बिल्कुल एक जगह है जैदपुर, मैंने वहां की मरसिया नगारी पे लिखा जैदपुर की दबिस्तान, जैदपुर की मरसिया नगारी। अभी मेरी नई किताब आई है दबिस्तान मेरठ की मरसिया नगारी। अब ये कि दबिस्तान कैसे बनते हैं, दबिस्तान क्यों वजूद में आते हैं, रामपुर के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि यहां देहली की नुमाइंदगी करने वाला एक बड़ा शायर जो है दाग जो है मौजूद था,
1: जी
0: और दूसरा जो है लखनऊ की नुमाइंदगी करने वाले अमीर और
1: मिनाई
0: जलाल
1: जी
0: जैसे जो है शायर
1: शायर
0: मौजूद थे।
1: यहाँ है।
0: इनके सामने ये था कि ये कैसे अपने आप को इन दोनों जो है बड़े दबिस्तानों से जो है अलग कर सकें, कि यहां के नवाबीन जिनका ताल्लुक पुश्तो, यानी उनकी जबान जो है पुश्तो थी,
1: जी
0: इसलिए यहां के जो लबो लहजा है, यहां का जो की लफ्जियात जो है उस पर पुश्तो और तुर्की जबान के असरात
1: हाँ
0: जो है वो मिलते हैं।
1: जी
0: ये जो है दहली में नहीं मिलेगा, ये जो है लखनऊ में नहीं
1: लखनऊ में
0: मिलेगा।
1: नहीं मिलेगा।
0: जैसे मैं जो है एक बात जो है आपको बताना चाहूंगा, जैसे रामपुरी जो रुहेला लहजा है, तो इसका असर जो है हमारे कई अजला पर पड़ा।
1: जी
0: आप बदायूं में भी जाइएगा तो ये जो है औरतों की जबान मिलेगी, मर्दों की जबान आपके जो है संभल में मिलेगा,
1: जी
0: मुरादाबाद में भी मिलेगा, बिजनौर में भी ये चीज मिलेगी। उसी तरह जो है पहेलियां जो है, एक चीज और, अब तक हमारी शायरी गजल कसीदा मरसिया मसनवी इन तमाम चीजों के जो गिरस रही थी, लेकिन रामपुर के दबिस्तान ने एक जो है अलग जो है सिंफ जो है वो दी, वो चार बैत। कई चीजों को जो है
1: जी
0: रामपुर की जबान ने जो है दिया, जैसे यहां रामपुर की जबान में जो इस्लामी महीने हैं उनके भी जो नाम बदले हुए हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, जैसे मुहर्रम को जो आशूरा कहते हैं, आपके जो है सफर को तेजी कहते हैं, रबीउल अव्वल को बारह वफात कहते हैं, रबीउस्सानी को जो अमीरा जी कहते हैं, आपके जमादुल अव्वल को जो मदार कहते हैं, जमादुस्सानी को जो ख्वाजा साहब कहते हैं, फिर उसके बाद शाबान को शब बारात कहते हैं, रमजान को रोजे के महीने कहते हैं, और शव्वाल को ईद या मीठी ईद जो है कहते हैं, ज़ीकात को खाली या ख्याली चांद कहते हैं, ज़िलहिज्जा को बकरीद या जो है आपके कबाब वाली ईद
1: जी
0: कहते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: आपने सही
0: ये
1: कहा, ये
0: चीज जो
1: रामपुर
0: है,
1: की एक अलग
0: हाँ
1: पहचान
0: उसी
1: है।
0: तरह जो
1: जी
0: है यहाँ औरतों और मर्दों के नाम भी जो है अलग अलग जो है वो पुकारे जाते हैं,
1: अच्छा
0: बन्ने खान, नन्ने खान,
1: जी,
0: चक्के
1: ये एक
0: चज्जे
1: रामपुरी
0: खान,
1: लहजा है, ये
0: लहजा
1: रोजमर्रा की बोलचाल
0: रोजमर्रा
1: के।
0: की
1: जी
0: बोलचाल है। इसने जो है बिल्कुल अपने आप को दिल्ली और लखनऊ की
1: से
0: जबान और लहजे से जो
1: जी
0: है अलग जो है किया।
1: दिल्ली की जो सादगी है वो यहाँ मिलती है,
0: जी जी
1: सोजो गदास मिलता है, और जो लखनऊ की जो मुहावरेदार जुबान है
0: हाँ
1: और जो नफासत है वो भी यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ मिलती है। एक और बात आसिफ साहब, पहले के दौर में और आज के दौर में, यानी जुबानों के दौर में, जैसे जैसे वक्त बदला और लोग बदले, तो उसमें भी फर्क आया, क्या कहेंगे इस बारे में?
2: देखिए, ज़बानी तो एक ये इरतका इसमें चलता रहता है, ज़बान हमेशा इरतकाई मंजिल में रहती है, हम कहें क्योंकि ज़बान, क्योंकि आप देखिए जो पहले की ज़बान थी और आज की ज़बान बहुत फ़र्क है। अब इरतका कैसे होता है, इरतका मतलब ये नहीं कोई नए अल्फाज, मतलब नई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ वही रहती है ज़बानी के एतबार से। मान लीजिए जो अल्फाज हम पहले बोलते थे वो पुराने हो गए, अब हमें हमारे साथ मामला आते हैं, हालात बनते हैं, उसे जदीद असलाहत उसमें आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अल्फाज उसमें शामिल हो जाते हैं। ज़बान जो है वो इलाके के एतबार से
1: बदलती जाती
2: बदलती जाती
1: है।
2: है। दिल्ली जो है
1: जी
2: उसकी ऐसे हिंदुस्तान की मरकज़ की हैसियत है, दारुल सल्तनत है वो हमारा आज का, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के लोग रहते हैं, और आज भी जो अदबी सरगर्मियाँ दिल्ली में होती हैं
1: जी
2: वो और इलाकों में इतनी
1: नहीं
2: नहीं
1: होती हैं।
2: होती
1: जी
2: हैं, तो अदबी सरगर्मियों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
1: जी
2: वहाँ पर आज भी जो लिखने पढ़ने का काम हमारा हो रहा है, जो शायरी वहाँ हो रही है, वो दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आते हैं, बसते हैं और उस पर वहाँ पर वो काम करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो उसका असर है दूर तक, उसकी धमक कह लीजिए, वहां जो कुछ भी होता है अदबी सरगर्मियां होती हैं उसके दबाव दूर तक सुनाई हमें देती है।
1: देती है, और दिल्ली क्योंकि खास मरकज है तो इसलिए वहां पर मैं समझती हूँ सभी जुबानों को ज्यादा
2: सभी
1: असर,
2: जमानों को जी
1: सभी असर दिखता है। और लखनऊ की जहाँ बात करते हैं हम, तो वहां पर जो पूरा हमारा पूर्वांचल है
2: जी
1: उसके असरात जो होते हैं वो लखनऊ से ही आते हैं, क्योंकि आप तो मऊ से ही हैं।
0: जी जी
1: तो अभी साहब वहां पर क्या है?

0: का कैसा माहौल है वहां पर? क्या उर्दू के ऐसी ही माहौल है जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखता है दिल्ली में या रामपुर में?
1: मैं आपको
0: तो
1: बताऊं कि दिल्ली और लखनऊ की उर्दू अब मुहाजिरों की मरहूने मिन्नत है। दिल्ली हो या लखनऊ हो, यहाँ के उर्दू के रखवाले आज जो है बिहार के और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो ज़्यादातर जो है वो मदारिस से आते हैं। वहाँ पर अब भी जो है उर्दू पढ़ने का चलन है और वो लोग जो है उर्दू पढ़ते हैं। और आप दिल्ली के चाहे बड़े बड़े शुअरा को देखिएगा या लखनऊ के बड़े बड़े शुअरा और उदबा को देखिएगा,
0: जी
1: वो सब जो है मुहाजिर हैं। मैं
0: अच्छा
1: आपको जो है जैसे एक जो है रुबाई जो है सुना रहा हूं, अब्बास रजा नैयर, जो बुनियादी तौर पे जो है अंबेडकर नगर जलालपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त उनका रुबाइयों का दीवान जो है 5 दीवान जो है वो शाये हुआ।

0: ज़्यादातर जो है वो मदारिस से आते हैं, वहाँ पर अब भी जो है उर्दू पढ़ने का चलन है और वो लोग जो है उर्दू पढ़ते हैं। और आप दिल्ली के चाहे बड़े बड़े शुअरा को देखिएगा या लखनऊ के बड़े बड़े शुअरा और उदबा को देखिएगा,
1: जी
0: वो सब जो है मुहाजिर हैं। मैं
1: अच्छा
0: आपको जो है जैसे एक जो है रुबाई जो है सुना रहा हूँ, अब्बास रजा नैयर जो बुनियादी तौर पर जो है अम्बेडकर नगर जलालपुर के रहने वाले हैं, और इस वक्त उनका रुबाइयों का दीवान जो है 5 दीवान जो है वो शाया हुआ है जिसमें 2500 रुबाइयां हैं, उसकी एक जो है वो मैं दिखाऊंगा। और मैं कह रहा हूं कि किस तरह रामपुर ने जो है अपने शनाख्त को बाकी रखा है। जो आप बात कह रही थी कि
1: जी
0: लखनऊ रामपुर में जो है वो, चूंकि वहां तो मुहाजिरों ने कब्जा कर लिया चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, तो अब जो है उनके एक जो है वो मैं रुबाई सुना रहा हूं। जयराम जी पिंजरे में ममोला बोले, आदाब बजा ले लाते हैं मैना बोले, पढ़ ली है परिंदों ने भी घर की तहजीब, दरवाजे पे मेहमान है तोता बोले। अब जो
1: बहुत
0: है
1: खूब
0: हमारे यहाँ का जो शायर है,
1: जी
0: जो हमारा फख्र है अजहर इनायती, वो जब उसी लहजे में बात करता है लखनऊ की, चूंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यहाँ दिल्ली के असरात हैं, लेकिन आज जो यहाँ का सबसे बड़ा शायर है अजहर इनायती, वो जब शेर कहता है तो वो कहता है रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए।
1: देते
0: और फिर एक चीज जो इस शहर की, इस यानी नवाबी शहर की खसूसियत रही है दास्तान गोई की,
1: जी
0: यानी दिल्ली में भी दास्तान गोई रही, लखनऊ में भी रही, लेकिन यहां की दास्तान गोई एक अलग जो है वो रहती है। वो अलग बात है कि वो दास्तानें सब जो है शाये नहीं हो गई हैं, उसको भी जो अज़हर इनायती ने अपने एक शेर में जो है वो किया है, रहते थे दास्तानों के माहौल में मगर क्या लोग थे कि झूठ कभी बोलते
1: बोलते
0: न
1: ना
0: थे।
1: थे
0: तो बुनियादी चीज ये है जो साफ गोई, जो जिंदा दिली,
1: जी
0: जो रामपुर ने अपनी शायरी के अंदर जो है
1: जी
0: दिल्ली की उस जबान से जो दाग के वसीले
1: जी
0: से आई थी और जिसे सैकल किया था अमीर ने और जलाल ने
1: जलाल
0: यहां
1: ने
0: पर, उसकी नुमाइंदगी आज भी हमें जो है
1: है,
0: रामपुर में जो
1: क्योंकि
0: है देखने
1: रामपुर
0: को
1: ने उस रिवायत को कायम रखा जो दिल्ली और लखनऊ से हमें मिली, उसको
0: जी।
1: आज भी जिंदा रखा है, और वही चीज और वही असरात आज हमें हर जगह देखने को अपने मिलते हैं। तो आज की जो ये मुबाइसा था, इससे साफ जाहिर हो गया कि बात चाहे दिल्ली की उर्दू की हो, या लखनवी उर्दू की हो, या फिर रामपुरी उर्दू की हो, इन तीनों का रिश्ता एक ही दरख्त के अलग अलग टहनियों या शाखाओं की तरह है। हाँ, अगर दिल्ली ने इस जुबान को दिल दिया, तो लखनऊ ने इस जुबान को बोलने का सलीका दिया
0: बेशक
1: और उसको तहजीब दी। रामपुर ने इसकी आबियारी की हिफाजत की, क्योंकि जब इसके पुराने आशियाने उजड़ रहे थे, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि मुगलिया दौर का खात्मा हो रहा था, तो दाग साहब ने रामपुर का रुख किया, और अमीर मिनाई साहब जो कि लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी इसे अपना मस्कन बनाया और यहीं मुकीम हुए। और ये इस बात का सबूत है कि रामपुर ने दोनों रिवायतों को गले लगाया, क्योंकि उर्दू है ही ऐसी मीठी जुबान और इतनी शीरी है कि जो कानों में रस जहां घोलती है, ये वहीं दिलों को भी जोड़ती है। शायद कोई ही ऐसी जगह हो जहां पर दुनिया के ऐसा कोई खित्ता हो या जगह हो जहां उर्दू ना बोली जाती हो, कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
0: सारे जहां में,
1: उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। आज की इस गुफ्तगू से साफ जाहिर हो गया कि उर्दू हमेशा जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी, और इसने खिदमत की है और वो हमेशा खिदमत भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने अपने बेशकीमती राय हमारे इस प्रोग्राम में दी। दिल्ली उर्दू, लखनवी उर्दू और रामपुरी उर्दू, जुबान और लहजे का असर। इस मुबाइसे में जो हजरात थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन और प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब। आज का ये मुबाइसा इख्तिताम करने की अपनी मेजबान आयशा राहत को रामपुर रेडियो मरकज से दीजिए इजाजत।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए पचरा गीत।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे हेमंत कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10

0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से, आवाज अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: अखियां करे जी हजूर

अब लीजिए सुनिए फिल्म, आपको भी पहले भी आपको भी पहले कभी देखा है। फिल्म से ये गीत, आवाज है उदित नारायण की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और

अभी आप सुन रहे थे आपको पहले भी कहीं देखा है फिल्म से ये गीत, उदित नारायण की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था निखिल विनय ने। अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में आसिकी फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी जी सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज में बादशाह फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

बादशाह फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब लीजिए सुनिए साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म एक रिश्ता से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब एक बार और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, गीतकार समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित। फिल्म का नाम है गुलाम।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइशें आपको भेजनी है 11:30 तक। एक संदेश में दो चार ही नाम लिखें, एक ही स्थान के श्रोताओं के नाम लिखें और शुरुआत में ही फिल्म का नाम जरूर लिखें ताकि आपका नाम प्रोग्राम में उस गीत के साथ शामिल हो सके। आज की फिल्में हैं क्रांति, नमक हलाल, पत्थर के सनम, सुहाना सफर, प्रेम कहानी और किस्मत। क्रांति, नमक हलाल, पत्थर के सनम, सुहाना सफर, प्रेम कहानी और किस्मत। 7905519981 7905519981 ये हमारे व्हाट्सएप कार्यक्रमों का नंबर है। क्रांति, नमक हलाल, पत्थर के सनम, सुहाना सफर, प्रेम कहानी और किस्मत। बहुत शुक्रिया कि फिल्मों के नाम बताते ही भारी तादाद में आपके संदेश हम तक पहुंच जाते हैं। और आपको बता दें कि कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश के लिए कल आप हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से 2221052, और इस नंबर पे अगर कोई दिक्कत आए आपको तो 2221050 पर प्रयास करें। एसटीडी कोड वाराणसी का है 0542। साथ ही कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें भेजें pkldaiarvaranasi@gmail.com पर, लेकिन उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें। बहुत सारे हमारे श्रोता गानों की फरमाइश उस कार्यक्रम में भेज रहे हैं तो वहां की फरमाइशें हम इंटरटेन नहीं करते। ईमेल आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बुधवार और गुरुवार को प्रसारित होता है इसी वक्त। उसकी मेल आईडी है aiarvnsfgexp@gmail.com। तो फरमाइशें आप इस मेल पर कभी भी भेज सकते हैं। और अब आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म क्रांति के इस गीत के साथ। बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं आप सभी सुनने वालों की। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मजनू का टीला दिल्ली के हमारे श्रोता। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी ने फरमाइश भेजी है माँ कालियास्थान नौली गाजीपुर से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा की फरमाइश छत्तीसगढ़ से आई हुई। जमानिया गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ की फरमाइश पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। गमहरिया जमशेदपुर के श्रोता हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल।

क्रांति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। फरमाइशें आप सबकी। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का ये संदेश। और

ये फरमाइश है अजीत कासाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कासाना की लदावली मुरादाबाद से आई हुई। बक्सर बिहार के श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के श्रोता तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। दतरंगी भाटापारा से इसी गीत को सुनना चाहा हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा ने। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता होजा। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूनाराम देवांगन की फरमाइश। सावतपुर छत्तीसगढ़ से हैं ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम और सतीश की। आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल सहनी चोहलदा बागपत से। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू। धानोरा विटाली तहसील नांदूरा बुल्ढाना से हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार। गुरसुख सिंह, गुरजीत सिंह नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत से। हमारे श्रोता हैं शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनिता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से ये फरमाइश आई मोहम्मद यासीन अंजान, साइबा नवाज, हसन नवाज की। आकाश विश्वकर्मा, विभा विश्वकर्मा, आभा विश्वकर्मा, श्री नागा बाबा धाम बरसड़ा करंडा गाजीपुर से। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप की फरमाइश आई है बलीतपुर मढ़हा मऊ से। रामगढ़ कैंट के श्रोता हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी और सलीम आजाद अहमदनगर बजडिया से हमें सुन रहे हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और मैंडी शर्मा। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ के श्रोता कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज हैं नूर महल मैसौल सीतामढ़ी से। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है नमक हलाल। ये आवाज किशोर कुमार की और साथ में आशा भोसले। अनजान के बोल बप्पी लहरी का संगीत है। बाकी फिल्में हैं पत्थर के सनम, सुहाना सफर, प्रेम कहानी और किस्मत।

नमक हलाल फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में था। फरमाइश आप सबकी अनूप सिंह नाथावत, धीरे सिंह सोलंकी, सागर पंवार हैं, कलमंडी खुर्द झालावाड़ से।

सारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा की फरमाइश चौटाला हरियाणा से आई है। कृष्णा घोड़ के प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे और सुनीता शिंदे की फरमाइश, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से। पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी और जीशान अहमद सिद्दीकी। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। ये व्हाट्सएप संदेश है बिजना मुरादाबाद से आया हुआ, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव और मनीष यादव का। बड़ा बम चौक खंडवा से है ममता, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। तांगोरी मोहाली पंजाब से हमें सुन रहे हैं गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीस अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, मोहम्मद रजा और उनके मित्र अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन हैं सरधना मेरठ से हमारे श्रोता। निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज की फरमाइश मुरादाबाद से। नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरुन निशा। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन। अस्तुपुरा मऊ से हमें सुन रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण और तरुण चौहान। वैष्णो कॉलोनी सनावत के श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शाकिर। दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा है। मुबारकपुर रुचि तकिया आजमगढ़ के श्रोता, आज तो आपका संदेश आ गया है, यानी कहीं न कहीं आपके द्वारा भेजे जाने में कोई दिक्कत है कि कुछ कार्यक्रमों में आपके संदेश नहीं पहुंच पाते हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। जज्जर हरियाणा से ये संदेश बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का है। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू हैं कोटिया कला दुर्ग से। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर और सुमन जायसवाल, प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी गुजरात गांधीग्राम से। तेलंगाना भोंगीर से ये संदेश आया मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला और फरहान लल्ला का। गोविंदपुर जीटी रोड रोहनिया वाराणसी से सुजीत विश्वकर्मा, रामजी पटेल, आनंद यादव और सरोज पटेल। और अब गीत शामिल है आपकी ही तमाम फरमाइशों पर, फिल्म है पत्थर के सनम, लता मंगेशकर की आवाज। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत था लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइशें आप सबकी।

पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का संदेश, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग से। मऊनाथ भंजन के हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन। लाल माता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा,

सविता माखीजा और स्वाति माखीजा, गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। ये फरमाइश बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव और नौबत यादव की अमोड़ा केश काल छत्तीसगढ़ से आया है। शुक्रिया। आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग हैं साथ में टोनी दीवान पंचकुला सेक्टर 9 से। मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा। सोनू, रविराज, गुलशन, लक्की जालंधर पंजाब से। ये फरमाइश आई है बाबा साहब कंकड़कर, साखरबाई कंकड़कर और परमेश्वर रोहिणी की अहिल्यानगर शेवगांव से। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून मुरादाबाद दुल्हापुर से। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। नरहन स्टेट समस्तीपुर बिहार से हमें सुन रहे हैं ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पराशर और आराध्या। पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू और पंकज साहू रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया वारंगल से। श्रोताओ, कार्यक्रम आप फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुन रहे हैं आपके ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:32 का फरमाइशें आपने भेज दी हैं तो इंतजार करें, आपका नाम जरूर शामिल होगा और कल आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से 11 बजे के बीच। साथ ही हमारे केंद्र के कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में वो प्रोग्राम रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। मेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। और अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं फिल्म सुहाना सफर के इस गीत के साथ। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल जिनका आज जन्मदिन है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस जोड़ी ने सैकड़ों ऐसे गीत दिए जो आज भी हर वक्त हर मौके पर हमारे साथ रहते हैं और बरबस होठों पर आ जाते हैं।

सुहाना सफर फिल्म का गीत और इस सुहाने गाने के लिए फरमाइशें आप सब की आई हैं। मोहित तिवारी हैं लखनऊ बाराबंकी से। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से हैं और आपने बहुत सही टाइप किया है। वो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग तरह के होते हैं, उन स्थितियों में ये कहना पड़ता है कि किसी भी स्पष्ट हिंदी या अंग्रेजी किसी ने लिखे। संतोष, नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति और अनीता की फरमाइश आई है सोरई ललितपुर से। बनवारीलाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम हैं चनोरा फिरोजाबाद के श्रोता। चोचकपुर बाजार गाजीपुर से राम सकल चौधरी, नेपाली चौधरी और भीम चौधरी। जवाहर नगर उदयपुर से हमें सुन रहे हैं बाबू भाई और भारती देवी। सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा और तन्वी बोध की फरमाइश रोहतक एकता कॉलोनी से। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया के श्रोता हैं। नवीन सिंह, ज्योति सिंह, केपी सिंह, क्रांति गुप्ता और भूलिया देवी राजनगर मधुबनी बिहार से। शास्त्री नगर बीड शहर के श्रोता हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया। राजेश खन्ना चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना, भानुराज खन्ना, अमित खन्ना हैं। यलांडू कोठा गोदाम जिला तेलंगाना से। वीरेंद्र, शमशेर, सुरेंद्र और मनोज बिहाण की फरमाइश जेवरा हिसार से आई हुई है। नगर पंचायत दिनारस हैं जयराम सिंह, सुषमा देवी, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे और जयराम बिंद। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। एटारोज गंड डूंडवारा उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर और अंजुमन खान। शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा ने फरमाइश भेजी बेवरा संबलपुर से।

व्हाइटफील्ड बेंगलुरु के श्रोता हैं भारत भूषण, नंजू श्रीवास्तव तो दिव्येंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, टीडी मल्होत्रा कालका से हैं और शुभ चंद्र बजाज के नाम के साथ। मधुबनी बिहार से नाहर मंटोला के हमारे श्रोता मोहम्मद साबित परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू हैं रसेड़ा से। दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी शनि मंदिर चौक खंडवा के श्रोता हैं। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन और इंदु सेन, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, विनोद और पिंकी जायसवाल। नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से हैं छिंदवाड़ा बेरडी से। मोसी मंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी कोटवा बनारस के श्रोता। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे और यशराज शिंदे ने फरमाइश भेजी है। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान कस्बा कला शाहजहांपुर से हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदी और नंदिनी कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी मखदूम नगर बजडीहा वाराणसी से। उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और भानुप्रिया दिवाकर पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ के श्रोता। प्रोग्राम की अगली पेशकश प्रेम कहानी, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में गीत, आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

गीता अब तक पहुंच रहा था। प्रेम कहानी फिल्म से हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह पटेल नगर मुगलसराय से। इन्होंने बहुत पहले ही फरमाइश भेजी हुई है। आप जैसे तमाम श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है उस कार्यक्रम में जिसे कहते हैं पत्र के लिए धन्यवाद। बहरहाल धन्यवाद आपको। और ये संदेश राहुल पाल, हरि मोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल का है, गोपी खिरिया तहसील भांडेर से आया हुआ। कंवर कॉलोनी बड़वास से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन की फरमाइश छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से। नागचुंग रोड संजय कॉलोनी से हैं अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार की फरमाइश हकीकतपुरा मऊ से। अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे, आरती लोखंडे हैं नेवासा महाराष्ट्र के श्रोता। नंगलखेड़ा फगवाड़ा से बालकृष्ण शर्मा और प्रवीण शर्मा। चकपुटही असनाव बाजार भदोही से गिरधारी लाल यादव, सिंटू गौड़ और दिनेश राय। वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश की फरमाइश संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू की फरमाइश। जौनपुर से हैं ऋषु मौर्य। सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरो खुराना, इसके पप्पी ने अपने पोस्टकार्ड की इमेज भेजी है एमएलबी रोड ग्वालियर से। स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंगिल हैं लोहगढ़ ठाकुरावाला के श्रोता। आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग हैं सहारनपुर से। गांव हणीखेड़ा सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। गहमर पकड़ीतर गाजीपुर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन दिल्ली के श्रोता हैं। कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एन्द्री सारंग, ओमनाथ शिवांग अदिति और उनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। जरूरुड़ वरुड़ महाराष्ट्र में ये जगह है, वहां से हैं बाबा साहब वाड़ूदेव और मीनाक्षी चरपे और रजनी, ये हमारे श्रोता। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद की फरमाइश महोबा बुंदेलखंड से। ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। जलगांव से दिनेश काले, वंदना काले और आदेश कुमार काले। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर बेरडी मध्य प्रदेश से। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं। ये फरमाइश राजेश सोनी, कंचन सोनी की बेरडी से आई है। मस्जिद मोहल्ला से मुस्कान बेबी और मोहम्मद अली, लेकिन ये

पर है ये जरूर हमें बताइएगा। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली के श्रोता, राधेश्याम यादव, प्रभा यादव और शालिनी सिंघार तलाई खंडवा से, डीके दुबे, दिव्यांशु, सूर्यांश, विनीशा बीजापुर आजमगढ़ से हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा चंदन कुम्हार गली कोलगांव के श्रोता हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह की फरमाइश पद्मा टॉकीज नेपानगर से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता, आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, पंकज कुमार, सपना भारती, आप दोनों ने फरमाइश भेजी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रश्मि झरना की फरमाइश राजकोट गुजरात से, कोदवा गुड़ान छत्तीसगढ़ से हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रानी रजनी और राहुल पूजा, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी हैं झारखंड जमशेदपुर सुपाही साही गांव से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, रुपेश संघई, महेश संघई हैं परभणी के श्रोता, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, पलेरा टीकमगढ़ से, और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म किस्मत का गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ें, ओपी नैयर का संगीत, एसएच बिहारी के बोल।

अपने दौर का बेहद मकबूल गीत फरमाइशें आप सबकी। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हमें सुन रहे हैं रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी और नावेद हसन अब्बासी। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना। स्टेशन रोड देवकली केराकस से डॉक्टर राजेश यादव, भोलानाथ यादव और कमलेश प्रजापति। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, दत्तरेंगी के श्रोता हैं। मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी बाई बागरी, बागरी मोहल्ला।

लरटलाई झालावाड़ राजस्थान के हैं। अमितेश कुमार तिवारी हैं करनई बलिया के श्रोता। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे और भोलानाथ यादव। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे और उषा बुरांडे। निपी साहनी और सुनीता साहनी रामगढ़ कैंट के हमारे श्रोता हैं। सुशीला देवी मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर डाबकी रोडा कोला से। राजमाता नगर बुल्ढाना से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े और आकांक्षा नरवड़े। उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल की फरमाइश पंढरिया छत्तीसगढ़ से। इफ्तखार अहमद, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ नई बाजार सकलडीहा चंदौली से। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और उनके पिताजी नानक चंद मल्होत्रा। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनहट्टी और आसिफ इकबाल। नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता और लाडो। ये फरमाइश कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी और निखत परवीन की। कृष्णा कॉलोनी हासी से हैं सुभाष योगी और राजू मिगलानी। जमालपुर गोगरी से सिकंदर कुमार तांती और पूजा देवी। बीड शहर से नंदकिशोर घाटे और संगीता घाटे। दादरीगेट भिवानी से ये फरमाइश कृष्ण मेहरा और कोमल मेहरा की आई है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा। सुजीत विश्वकर्मा, रामजी पटेल गोविंदपुर जीटी रोड से। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम और अमजद अली। मध्य प्रदेश उज्जैन से विनोद मूड़त और नेहा जैन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और मोहिनी चौहान। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्की। खजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श और सार्थक चंसौलिया। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और एजाद कुरैशी हैं गंज डुंडवारा के श्रोता। के एच राही, गुड़िया बेगम और वकील गंज डुंडवारा से। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी और राहुल। आनंद प्रसाद श्रीवास्तव हैं आईएमएस वाराणसी से। शिरटे सांगली से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे। चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा। सरगांव छत्तीसगढ़ से आपकी फरमाइश आई है विनोद बारासा, रोशनी बारासा हैं खोखरा वाली गंगानगर से। चंद्रकांत सीमा साहू धमतरी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश शाह, अभय कुमार बिहरा बाजार झुमरी तिलैया से। मालवा से हैं जगदीश धाकड़ नायमा और रंजू बाई धाकड़। रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी की फरमाइश महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से। संतोष नामदेव अभय और अनिल हैं सोरई ललितपुर से। अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान और आयशा सबी। गमरिया जमशेदपुर से विपिन और स्वाति जायसवाल। चोचकपुर से भास्कर दुबे का नाम फिर से आया। समस्तीपुर बिहार से हैं मीरा सिंह और ज्योति सिंह। गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। दिलदारनगर गांव गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और कयूम शाह। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी। रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी हैं आकली दीवान मध्य प्रदेश से। तो श्रोताओं, ये थी आपकी तमाम फरमाइशें जो इस कार्यक्रम में आई वो शामिल हो गई और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कल आपसे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बातें होंगी ऐसी उम्मीद, और प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहें पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
1: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत। जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला
2: जी,
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीद

0: अरि का माध्यम क्या होता है?
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओं, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांकेन।
2: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों?

0: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
2: नमस्ते पिता।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चाउतान जी घर पर हैं क्या?
3: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
2: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
3: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
3: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
4: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
3: थैंक यू।
5: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
3: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
3: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
3: अच्छा तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
3: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेम का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
4: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
5: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
3: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
4: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
3: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
4: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
5: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।

0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो, चलो।
2: थोड़ी देर
1: कल क्या क्या होता है इस उत्सव में?
0: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
3: जल उत्सव क्यों?
0: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
3: अच्छा।
0: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
3: हाँ।
0: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। जी।
1: अरे, ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो, चलो।
2: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
5: हैप्पी संकेन।
2: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
1: अंकल, लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
0: अरे।
2: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
6: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
7: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
9: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन, बट विद अ डिफरेंस।

0: स्माइल। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत,
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं रश्मि चौधरी। पहले आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मानंद की भक्ति रचना।

0: 5 4 2 2 2 7 6 5 8।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें,
2: 0 5 4 2 2 2 7 6 5 8।
3: सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं रश्मि चौधरी। पहले आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मानंद की भक्ति रचना।

0: मीराबाई की रचना अभी आप सुन रहे थे रश्मि चौधरी के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
4: सुन जा आठन
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित पूरन महाराज का एकल तबला वादन। ताल है धमार। सारंगी पर लहरा दिया है ध्रुव सहाय ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तबले पर प्रस्तुत धमार ताल। कलाकार थे पंडित पूरन महाराज, सारंगी पर लहरा दिया ध्रुव सहाय ने।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
5: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
4: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारे

0: बाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एचएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मोहम्मद यासिन, पिता का नाम इखलाक अहमद वारसी, ये जैतपुरा वाराणसी के निवासी हैं और 22 मई 2026 से लापता हैं। मोहम्मद यासिन की आयु है 60 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, शरीर गहरा, चेहरा लंबा है। इनके हाथ पर चोट का निशान है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। नीतू राजभर, पिता का नाम शिवनाथ राजभर, ये रौना खुर्द चोलापुर वाराणसी की निवासी हैं और 29 मई 2026 की भोर में 3 बजे से अपने घर से लापता हैं। नीतू राजभर की आयु है 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, शरीर सामान्य, चेहरा गोल है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा था पीले रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। सुशील कुमार उपाध्याय, पिता का नाम राम प्रवेश उपाध्याय, ये हड़ियाडीह चौबेपुर वाराणसी के निवासी हैं और 13 मई 2026 की सुबह 9:30 बजे से अपने घर से मुनारी बाजार दुकान के लिए निकले और तब से लापता हैं। सुशील कुमार उपाध्याय की आयु है 34।

वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था ग्रे रंग की टी शर्ट और लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित होगी। ये दोनों ही प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। बातचीत का विषय होगा मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। विशेषज्ञ होंगे तारा चंद्र बैरवा। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे हेमंत कुमार श्रीवास्तव। इनके गाए कुछ लोकगीत आप सुनेंगे। दिन में 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, अभिनव कुमार का काव्य पाठ। यूथ डायरी में आज के शब्द इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें आप ब्रज गीत सुनेंगे। कलाकार होंगे सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौमिक। सुहाने तराने कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति ललिता शर्मा की। अंगनैया कार्यक्रम में 1:15 पर चर्चा और गीत संगीत के अलावा बातचीत का विषय होगा बदलते भारत में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार प्रतिमा पांडे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

मकामात को यकीनी बनाया जाए। डेयरी फार्म्स के जरिए बच्चों को दूध मुहैया किया जाए और खवातीन, बच्चों, बूढ़ों, माजूरों और हामिला खवातीन की जरूरियात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती तब्दीली कमीशन की मीटिंग में रियासत में जारी बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों, सनअती तरक्की, सरमायाकारी, अवामी बहबूद और खिदमात की फराहमी के मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने जीरो पॉवर्टी मुहिम के तहत अहल खानदानों को अंत्योदय कार्ड जारी करने और तमाम स्कीमों के तहत फवायद फराहम करने की हिदायत दी। लखनऊ नाइट सफारी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने तमाम रस्मी कार्रवाईयों को तेज करने और बरवक्त पेशरफ्त को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में हज 2027 की तैयारियां इस साल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। वज़ीर मुमलिकत दानिश आज़ाद अंसारी की पहल पर मरकजी हुकूमत ने हज दरख्वास्त की आखिरी तारीख 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी ने पहली मुकर्रर तारीख के अंदर 19,280 हज दरख्वास्तें वसूल करके एक

होगी। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अजला में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से नदियों की सतह अब तेजी से बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी में दरियाए शारदा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी और कुशीनगर में दरियाए गंडक खतरे के निशान पर पहुंच गई है। बारिश से निजामी जिंदगी भी दरहम बरहम है। पीलीभीत जिले में मुसलसल बारिश की वजह से 8वीं जमात तक के स्कूलों को आज बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने कल तक रियासत भर में मूसलाधार बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं, अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगने यह कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते और इमिर्ति बहन तोरो के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली, नमस्ते और नमस्ते के साथ साथ एक बात और कही लाली ना।
0: हाँ हो
1: कि तो के देख के बार मन हरियर हो जाला और भैया बहनी जो कार्यक्रम सुनत हो उन लोग का मन हरियर हो जाला।
0: हरियर तो देखा अब सभी का मन होई, सावन आवे वाला है और चढ़ गई है आषाढ़। चारों ओरी पानी से हरियाली भी पनफत है, चारों ओरी कितना नीक लगत हो। जे भी झुरायल रहल है धरती चाहे हो चाहे
1: मनई हो चाहे पेड़ पौधा
0: हो मनई हो सब हरियाए गए।
1: बिल्कुल भाई, हम कहें कि ये समय जिधर भी निकल जाए लाली ना, खेत खरिहान के तरफ देखा है धान रोपात बा, क्यों ध्यान बिना बोले बा, क्यों निकालत बा, क्यों रोपत बा, वही में गीत गौ नहीं होत बा, हंसी मजाक होत बा, तो देखा कितना ये मौसम अच्छा लगत हो। कहीं कि अगर यह माहौल यह परिवेश हर समय रहते कितना अच्छा लगे।
0: बिल्कुल सही बात कहत हूँ। देखा प्रकृति का कामे है निर्माण का सृजन का। हाँ, जहाँ प्रकृति अपने अनुकूल हो जाए लेना वहाँ पर सब चीज सकारात्मक हो जाएगा, सब चीज नया हो जाएगा, सब चीज नया निर्मित हो लगेला। हाँ, यही तरह से आपन रेडियो भी हो।
1: अरे बात कहलू रेडियो को तो हम कहें कि हमारे तो मन तो इतना खुश कह देलू अपने ये रेडियो के माध्यम से। देखा हम लोग का ना प्रयास यह हो लाली कि भाई इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम सुनावल जाए, रोजी रोजगार के बात सुनावल जाए, ज्ञानवर्धक बात हो, बच्चन का बात हो, बहन लोगन का बात हो, और साथ ही साथ अपने देश में कैसे एकता रहे, सौहार्द रहे, प्रेम रहे, ये पे अच्छी अच्छी वार्ता हो, बतकही हो, समय समय पर हम लोग यही बातें सुनावल जाए लाली कि अपने लोगन में और साथ में देश के हर नागरिक में जो प्रेम सौहार्द और राष्ट्र निर्माण का भावना बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल सही बात कहो। तो देखा घरे दुआरे जब गवई में घरे का घरैतिन बैठल रहे लिन तो भाई वो इतना ना ही दुनिया देश के बारे में जान पौती, लेकिन ई हमन का जो आकाशवाणी है ना, ये माध्यम से नई नई चीज की दूसरे जगह का होत हो घर ही बैठे उनके पता चल जाएला। साथ में जब हमन उनसे बतकही करीला रेडियो के माध्यम से तो कैसे न पाती आवेला। जब अब तक जो है मोबाइलिया पर डिजिटल हो गई है तो ऊपर पाती आवेला मेल पर।
1: हाँ लाली,
0: सुन सुन के कितना निक लगेला कि सब लोगन इतना ध्यान से सुनत हुवन। कौनो कौनो कार्यक्रम का बहनी लोगन तारीफ भी करेलिन, प्रशंसा करेलिन, हमन के जानकारी से संतुष्ट भी होलिन। एकरे साथे साथे जौन पंचायती में तरह तरह का विशेषज्ञ भैया लोगन आवेलन और नए नए तरह का जानकारी देवेलन, ओसे भी किसान भैया लोगन के जब लाभ होला ना तो उत्तृप्त हो जाएलन। तो देखा ई राष्ट्र के निर्माण का काम तो हमन करते है रेडियो के माध्यम से।
1: बिल्कुल गलत है। एकरे साथ साथ एक बलाली बात हम हो कह चाह कि देखा हो खाली बड़कन का तो बात कह कर तू बहन लोगन के, अपने ननकनियन के बदे भी हम लोग तरह तरह का कार्यक्रम काहे से कह जाने कि छोटेपन पर जो निर्माण हो जाला, जो संस्कार बन जाला, वो आजीवन बच्चन बनल रहला। तो अपने ये रेडियो के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने छोटे बच्चन बदे भी हम लोग तरह तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत कराईला, गीत गौन ही लोग के मन का सुनवाईला, तरह तरह का जो है प्रेरणादायक कहानी सुनवाईला, बड़े बड़े महान पुरुषन लोगों के बारे में जानकारी देला। यही बदे कि बच्चन जब एक कार्यक्रम के सुने तो भाई जोन बच्चन अभी जाने लायक भरूंगा कहानी के माध्यम से सुनने लायक भरूंगा, उनके भी दिमाग में थोड़ी थोड़ी ये बात आवे लगा और बड़ा होकर के वो

0: उनके व्यक्तित्व से, उनके कहानी से बहुत कुछ सीख सकें।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुई इमरती बहन। और जब इतना बात बतावत हो तो इहो तो है कि सरकार का जितना नया योजना चलेला, हाँ सबसे पहले हम ही लोगन ओकरे बारे में सचेत करेला, जागरूक करेला, बताईला जा, हाँ और बहनी लोगन ऊपर काम भी करेलिन, भैया लोगन भी ऊपर काम करेलन, तो देखा हर तरह से देखबू ना तो ई जो रेडियो है ना ई मनई के जीवन का एक हिस्सा बन गई है।
0: ए लली,
1: हो
0: एक बात और हम कहें कि भाई कहीं कि अपने देश में सबसे अधिक के हो युवा हुआ, और कहल जाना कि अगर क्यों देश के आगे बढ़ाना हो, सशक्त बनाना हो, नेतृत्व का क्षमता प्रदान करना हो, तो भाई युवा के हाथ जो है मजबूत होए के चाहिए। ऐसे हम लोग समय समय पर अपने ये रेडियो के माध्यम से अपने देश के युवा लोगन बदे भी तरह तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जो है यहाँ से प्रसारित होला, जेके कि सुन के अपने युवा लोगन में एक नई चेतना, एक नई उत्साह, एक नए निर्माण का बात हो।
1: देखा निर्माण के बात हमन करत ही ना, तो देखा ई रेडियो ही नहीं जौन हम लोगन का घर परिवार हाँ वहाँ भी निर्माण करावे में आपन पूरा सहयोग हमन कर रहेला। आ एकरे बारे में सबके जागरूक रहे के चाहिए, सचेत रहे के चाहिए कि भाई आधुनिक समय में हर केहू के हाथे में जब मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ई न सोचे कि भाई वही में अझुराए के रह जाए और अपने परिवार के लोगन का ध्यान न दें, आपन ध्यान न दें, भाई ऐसे सब चीज बिगड़ जाए के तो नो विकास मने कह ली।
0: भाई विकास के बात कहलू है तो लाली हम यही कहे चाहब कि देखा मोबाइल तो बड़ी अच्छी चीज हो, लेकिन ई हो कि भाई हम उसे का सीखत हिला और का ना सीखत हिला। और दूसर बात ई हो जो ना अपने पारिवारिक परिवेश का बात होता ना, कि भाई अपने परिवार का परिवेश का निर्माण भी तो हम लोग के घर के सदस्यन से ही होला।
1: बिल्कुल।
0: और जोन कहीं कि अगर आपस में घर में ही प्रेम हो, सौहार्द हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, और साथ ही साथ अगर देखत हिला कि अगर माता पिता जो है अपने घर में अपने भाई बहन हर रिश्ते नाते के जोड़ के चलत हुआ, तो कहीं कि बच्चा भी ऊँची बचपन से देखेला। और आज के देखा दौड़ भाग की जिंदगी में आधुनिक परिवेश में ये सब चीज छूटल चल जाते हैं।
1: असम मन ही अगर सोचा था अपने निजी स्वार्थ के बारे में ना, तो ओके छोड़ के बाद दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में अगर मने ही सोचल शुरू कर देना, तो आज के समय में भी जौन रिश्ता हो, जौन बिखरत जात हो, ओके संभारल जा सकी। भाई अगर सब केहू एक दूसरे का चिंता करी, एक दूसरे के नीक के बारे में सोची, हित के बारे में सोची, तो ई तो प्राकृतिक भावना है ना कि अपने आप आई कि अरे वो हमारे बारे में सोचत हुआ, हम उनके बारे में गलत का है सोची।
0: देखा गांवन में हो ना, अगर एक घरे में मने बीमार हो जाइया या केहू की परेशानी हो जाला, तो देखा आस पड़ोस का लोग, गांव के लोग सब ही परेशान हो जाला। जिकरे लायक जोन भी होला सोचला भाई ई सहयोग कह के भला मने के जो है सहयोग कह देवल जाए, तो भाई वो ठीक हो जाइए। उनके अगर पैसा का कुछ आर्थिक सहयोग हो तो ओके भी लोग आपस में बांट के रोन सहयोग कह देना। तरह तरह से जो हो भाई कि अगर क्यों परेशानी में हो या क्योंकि कोनो आवश्यकता हो, तो अगर घर गांव के लोग मिलजुल के उनका जो हो सहयोग कह देना, तो ऐसे ही इस सहयोग का भावना हर आदमी में बनल रहा है, तो समाज में देखा कितना शांति और कितना प्यार रही।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो। और एकरे साथ ही साथ घर में भी आपस में अगर बड़ बुजुर्ग हुआ तो उनके संगे कैसन व्यवहार करे के है, ये बहुत सोच समझ के करे के चाहिए। भाई आपका जौन व्यवहार है ना वो आपके छोट बच्चन के लिए जो ना प्रेरणादायक हो सकेला।
0: हाँ?
1: अगर आप गलत व्यवहार करत हैं तो आपका लड़कन बच्चन कभो अच्छा व्यवहार न सीखिए, वो अपने घरे के मने के साथ भी गलत व्यवहार करी है, अब बाहरे भी जई हैं तो वो यही तरह का व्यवहार करी।
0: ऐसे बहुत जरूरी है लाली ये बात के जानना और सुनना और समझना कि भाई घरे में खास करके अपन महतारी लोग, अपने पिता लोग, जे भी घर में बड़ बुजुर्ग का होंगे उनका सम्मान करें, उनके प्रेम करें, उनके बदे समय निकालें, जैसे कि परिवार का हर रिश्ता मजबूत रह सके और हमारे जो आ वाली पीढ़ी हो, बच्चन हुआ, उनके अंदर एक अच्छे संस्कार का विकास हो सके।
1: बिल्कुल। देखा हो बतकही करब तो बहुत बतकही होई और बतियावे के भी है, लेकिन संदेश भी सुनल और सुनवावल बहुत जरूरी है, तल्ला ई संदेश सुना वही लोगन भी सुने
0: सुनल जाए।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: लली।
6: हाँ हो।
5: अभी बहन लोगों के बात करते रही ना कि बहन लोग का जो सहयोग हो या कहला जवन की अपने परिवार में भूमिका हो वो खाली घर तक ही ना हो। आज महिला लोग जो हो ना घर के बाहर से लेके अंदर से लेके समाज से लेके परिवार से लेके हर जगह अपन जो हो की भूमिका निभावत है। इतना नहीं, अब तो खेती खलिहान जहान हर जगह महिला लोग अपन भूमिका निभावत है।
6: तो भाई यही विषय पर एक ठे नीके का वार्ता बहनी लोगन के सुनवा दिया जाए कि ई भारत जोन बदलत है इमन ग्रामीण महिला लोग का भूमिका है। वार्ताकार हैं प्रतिमा पांडे बहनी, तो बहनी लोगन इके ध्यान से सुने।
5: सुने
7: बहनों, आज का युग नवीन चेतना का युग है, डिजिटल और तकनीकी क्रांति का युग है। आज का समय असीम अवसरों से बदलाव से भरा है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, काम के तरीकों में, घर परिवार में, समाज में, रहन सहन के तरीकों में, हर जगह हर तरफ बदलाव आया है। बदलाव का असर हर जगह दिख रहा है, तो हमारे ग्रामीण समाज में भी इसकी बयार बह रही है। ग्रामीण भारत में जिसमें हमारी आत्मा बसती है, यहाँ आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अब गांव के डिजिटल क्रांति और स्मार्ट विलेज का भाव भी तेजी से दिखाई दे रहा है। गांव का यह नया स्वरूप जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है। जहाँ हर तरफ बदलाव आ रहा है, तो हमारी ग्रामीण बहनें इससे कैसे अछूती रह सकती हैं? ग्रामीण महिलाओं के जीवन में, उनके घर परिवार समाज के प्रति जिम्मेदारियों में उनकी भूमिका तेजी से बदली है। महिलाएं किसी भी परिवार समाज के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, किसी भी परिवार की नींव होती हैं, सृष्टि की जननी होती हैं। बहनों, बदलते दौर में खुद को ढालने से ही हम समाज और परिवार में अपनी उपयोगिता को बनाए रख सकती हैं, क्योंकि जो लोग समय के साथ नहीं चलते, समय उन्हें कहीं न कहीं पीछे छोड़ देता है। महिलाएं संस्कार की प्रथम शिक्षिका होती हैं, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विकास की मजबूत स्तंभ होती हैं। अब बदलते ग्रामीण भारत में महिलाओं की सहभागिता को पुरुषों से कम नहीं आका जा सकता। अब वो सिर्फ सहयोगी बनकर नहीं रह गई हैं, कहीं न कहीं ग्रामीण विकास की अगुवाई भी कर रही हैं। हमारी ग्रामीण बहनों ने अपनी प्रतिभा और कौशल से सबको अपना मुरीद बना लिया है। अब वह केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रह गई हैं, वो ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्य चालिका बन चुकी हैं। हमारी बहनें कई तरह के कार्य करती हैं, जैसे सजावटी चीजें, लकड़ी की नक्काशी, मूर्ति बनाना, पेंटिंग करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाना, चटाई कालीन बुनना और खादी रेशम के कपड़े बनाना, घर पर पापड़ अचार मुरब्बा जैम सेवई बड़ी तैयार करना, अगरबत्ती मोमबत्ती बनाना, थैले बनाना, साबुन बनाना, शहद उत्पादन करके, फूलों की खेती करके और टोकरी बुनने जैसे कई कामों के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं, जिससे वो अपने परिवार की आय का प्रमुख स्रोत बन गई।

हैं। अब ग्रामीण महिलाएं कृषि, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में एक मजबूत शक्ति बनकर उभर रही हैं। वे न केवल पारंपरिक खेती कर रही हैं, बल्कि आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग कर रही हैं, जैविक खेती का उपयोग भी कर रही हैं। बहुत सी बहनें ट्रैक्टर और अन्य मशीनों का संचालन भी सीख रही हैं। डिजिटल साक्षरता और स्वयं सहायता समूहों ने उन्हें आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। पशुपालन और डेयरी उद्योग में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। फसलों की बुआई, कटाई से लेकर बाजार तक उनकी भागीदारी हो रही है। आज राजनीति का रक्षण ने ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता को नई उड़ान दी है। आज ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं में हमारी बहनों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। पंच, सरपंच और समिति सदस्य के रूप में बहनें गांव के विकास में शिक्षा, स्वच्छता, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सही निर्णय लेकर अहम भूमिका निभा रही हैं। अब वो केवल नाम की प्रधान नहीं रही, सारे जरूरी कार्य कर रही हैं। वो एक माँ और परिवार की धुरी के रूप में अब महिलाएं बच्चों के विवाह में भी यह ध्यान दे रही हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यानी बच्चे कुछ नौकरी या व्यापार करने लगें तब उनका विवाह किया जाए। अब हमारी बहनें परिवार में बच्चों, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान देने के साथ साथ, उनके खान पान का ध्यान देने के साथ साथ अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हुई हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो योगा कर रही हैं, व्यायाम कर रही हैं, अपने खान पान में सुधार कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नारी स्वास्थ्य का महत्व केवल एक महिला के व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है। जो महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है, वो हर कार्य में बेहतर तरीके से कर सकती है। आज हमारी ग्रामीण बहनें आशा कार्यकर्त्री, ANM दीदी जैसी भूमिकाओं में पूरे गांव के स्वास्थ्य और टीकाकरण की कमान संभाल कर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत आधारशिला बनी हुई हैं। आधुनिक समय में डिजिटल इंडिया और स्मार्टफोन की पहुंच ने हमारी बहनों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। वे आर्थिक समावेशन के तहत डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रही हैं, ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं और अपने छोटे छोटे व्यवसायों को ई कॉमर्स से जोड़ कर, यानी डिजिटल होता गांव हमारा, महिला नेतृत्व से रोशन भविष्य सारा। ग्रामीण बहनें बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी के रूप में काम कर रही हैं। छोटे छोटे उद्योगों के जरिए वो न केवल खुद कमा रही हैं, बल्कि अन्य को भी रोजगार दे रही हैं। ग्रामीण बहनों के लिए भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदल दी है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई लखपति दीदी योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल और प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1 लाख या उससे अधिक हो सके। ऋण कौशल और बाजार संपर्कों तक विस्तारित पहुंच के साथ यह भागीदारी आय सुरक्षा की ओर एक बड़ा बदलाव है, जहां महिलाएं न केवल काम कर रही हैं, बल्कि अधिक मजबूत आजीविका का निर्माण कर रही हैं। अब वे सहयोगी नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की अगुवा बन चुकी हैं। और आजकल गांव की महिलाएं नमो ड्रोन दीदी जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित होकर खेती किसानी में ड्रोन उड़ा रही हैं, जो ग्रामीण बहनों के लिए काफी दिलचस्प है। इस प्रकार आज हमारे गांव की बहनें किसी से कहीं से भी कम नहीं हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, खेल हो, छोटे उद्योग हो, हर जगह अपनी अनोखी पहचान से वो संसार को जीत रही हैं, नई मिसाल पेश कर रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। इस प्रकार बहनों, महिलाओं का सशक्तिकरण संपूर्ण ग्रामीण भारत के विकास और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। आज की महिलाएं आधुनिक भारत की अग्रदूत हैं, जो अपने सशक्त कदमों से
न केवल अपने परिवार अपने

0: समाज बल्कि पूरे राष्ट्र की तस्वीर बदल रही हैं।
1: लाली
2: हाँ हो,
1: बड़ी ध्यान से सुनो, तलू बहिन लोग भी ध्यान से सुन रही हैं कि बदलते भारत में ग्रामीण महिलाओं की क्या भूमिका है। वार्ताकार रहनी है प्रतिमा पांडे, तो बहिन बहुत फरिया के बड़ी अच्छी जानकारी देनी है।
2: देखा, अच्छा अच्छा हम लोगन बतियावा थी, अच्छा जानकारी भी हो था। आ शुरुआते तो कहलू है कि चारों ओरी हरियरी, हमके देख के हरियर लगा था। तो भाई हरियर अगर लगा था तो ओकर कुछ मतलब भी निकली कि नहीं?
1: भाई हम कहीं चढ़ता बदरवा जो न होगी बरसे लगत तो देख के तो हरियाली अपने आप चारों तरफ झूम लेगी।
2: तो चला नीके का गीत बहनी लोगन भी सुने, अतहू सुना महुआ बनर्जी और उनके सखियन के स्वर में
1: सुनल जाए।

0: मेरी बहन कैसन लगल गीत।
1: अब भाई गीत तो कहीं की तो कबो खराब ना सुनो तो कहीं की सम सामयिक हो, मौसम के अनुसार हो, सावन वर्षा आओ वाला हुआ है और बादल घिरले हो और
0: हाँ
1: उसने में अगर ऐसा गीत सुनवा तो मन तो मनसायन हो ही जाए।
0: अरे मन तो मनसायन तब्बो होई जब पकौड़ी खिया देबो तने
1: अरे
0: तो
1: भाई
0: देखा
1: कहीं
0: पानी
1: लाली
0: बरसे लगेला ना तो मन कहे लाइए कि गीत होत रहे आ पकौड़ियों मिलत रहे।
1: ए लाली हो
0: हाँ
1: तू देखा अपने मीठी मीठी बातन में इतना तुम्हें फंसा देलू ना कि भाई हम तोहरे बाती के जौन हो कि ना कर सके कि ई हम काम ना करब।
0: हाँ तो खियावा हो।
1: हाँ तब हम कहें कि बहन लोगन के भी बता दें और
0: हाँ
1: तुम्हें तो हम खीबे करब।
0: तो कौने चीज का पकौड़ी आज बताइबू बहनी लोगन
1: देखा
0: के।
1: इस समय ना मक्का बहुत तेज मिलत हो बाजारे में
0: माने
1: जहाँ
0: वो भुट्टावा जौन
1: हम
0: होला।
1: भुट्टवा होला तो वही का पकौड़ी हम बहन लोग के बताओ चल थैला। और कुछ ज़्यादा बहन लोग मेहनत ना करे के बहन लोग पकौड़ी तो बनेबे करे नहीं करे के में यह हो कि मुलायम वाला जो दाना एक निकाल ला खूब बढ़िया सा और के खूब बढ़िया साफ़ कर ला में रेसा वसा ना रह जाए। साफ़ कर ले के बाद ओके और लालियों के अगर सील हो तो सील पर थोड़ा दरदरा पीस ला या तो बहन लोगों के पास तब मिक्सर हो गई हुआ उनमें ई भी ना रहा कि एकदम पतला पीस ला ऐसा नहीं दरदरा रहे जैसे लोग दाल पीसी ला।
0: अच्छा
1: ओकरे बाद जो हो ओके पीस के अलग करके रख ला बर्तन में फिर उनमें बेसन डाल दा अपन अपने हिसाब से महीन महीन प्याज काट ला मिर्चा काट ला और जोन भाई कहीं के सामग्री जोन मसाला आप जाना नहीं हींग डाले नहीं जीरा डाले नहीं अजवाइन डाले नहीं ये सब के डाल करके और खूब बढ़िया सा ओके मिला ला और जैसे आप पकौड़ी छाने नहीं ओके बढ़िया सा छान ला। और कहीं की अगर हरी चटनी लाली बना दें तो भाई खाए का तो मजा बढ़ जाए।
0: देखा कुल बतौलू है नमक नहीं बतौलू माने सब
1: हाँ
0: हो ही अगर नमक नहीं पड़ी ना तो कुल स्वाद फीका हो जाए पकौड़ी का।
1: तो ये बतिया तो हम तोहरे बदे छोड़ दे रही है कि देखी लाली हमें
0: हाँ
1: बात पकड़े नहीं कि ना पकड़ने की पकौड़ी में नमक डलवाओ नहीं कि नहीं डलवाओ नहीं।
0: माने पकौड़ी तो सुनते मुंह में पानी आवत है कि भाई अगर बहनी लोगन एके बनाई है खाई है तो जरूर तारीफ करी है कि इमृति बहन कुछो बतौले रही ना।
1: तो हम कहें कि यही बदे हम लोग बताइला कि भाई अपने मौसम के अनुसार भी जोन मिले ओके भी जोन बहन लोगन के बतावे के
0: हाँ
1: चाहिए।
0: आ देखा जानकारी का एक थे और जरूरी बात बहनी लोगन के बतावे की है कि हम लोगन के जोन कार्यक्रम में हेलो अंगनैया कार्यक्रम होला वो 23 तारीख दिन गुरुवार के हुई और कार्यक्रम का विषय रही कि महिला और बच्चन में कुपोषण का जोन समस्या हो जाए ओकर का समाधान है यही विषय पर बातचीत करी है आहार विशेषज्ञ गरिमा उपाध्याय जी। तो बहनी लोगन जरूर हमलन के फोन करी है ए नंबर पर नंबरवा हाली से बतावा।
1: हम कहें कि यहाँ का जो है स्टडी कोड लिख लें 0542 और फोन नंबर मिले हैं ऐप पे 2221052।
0: मनी 222-10-52 पर फोन करे के है 0542 कोड लगा के। तो बहनी लोगन हम लोगन के आपके फोन का इंतजार रही। अब विषय भी ऐसा है कि इस समस्या से हर 3 में से 1 बच्चा चाहे महिला कुपोषण का शिकार हो ले तो कुपोषण पर जानकारी देवे बदे आहार विशेषज्ञ के से बात करे बदे हमन के फोन जरूर करी। और देखा हो जानकारी का बात हो गई गीत गवनई हो गई सब कुछ हो गई लेकिन चलत चलत बहनों लोगन से ई कहल बहुत जरूरी है कि पानी बरखा बुन्नी जब होत है ना तो वर्षा का जल भी संरक्षित कई बहुत जरूरी है। हमन के पास जल का सीमित स्रोत है हाँ
1: बिल्कुल
0: और आवे वाली पीढ़ी बदे हमन के अगर कुछो बचा के रखे के है तो सोच बनावे के होई ऐसे भी पानी के संरक्षित करे के होई बहुत पानी जियान न करे के चाहिए।
1: बिल्कुल आ कहें कि छोटी छोटी जो बात हो अगर हम लोग ध्यान कैल जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकेला। लेकिन कहें कि घड़ी भी इशारा करत हो कि बही लोगों से विदा लेवे का समय हो गल हो तो आवा चल जाए
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कार्यक्रम में कलाकार हैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव। पहले सुनिए इनका गाया एक दादरा।

0: The tunnel collapses in Sikkim's Namche district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय

0: रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक

0: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneaiar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटवन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: जी आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 और 8 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।
2: नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाने तराने। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ललिता और दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम पुरानी यादों के झरोखों से कुछ ऐसे नगमे लेकर आए हैं जो वक्त की धूल में भी अपनी चमक नहीं खोते। आज का ये दिन कुछ खास है। खिड़की के बाहर मौसम में एक अलग ही खुमारी है और ऐसे में मन करता है बस पुरानी धुनों में कहीं खो जाए। तो दोस्तों, मोहब्बत की बात हो और सपनों का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सपने में जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने जो दो दिलों को जोड़ते हैं। आज का हमारा पहला सफर उसी सुनहरी याद की तरफ जाता है जहाँ से

सिलसिले शुरू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सिलसिला का वो सदाबहार गीत, जब भी इसे हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया है। तो चलिए इसी खूबसूरती के साथ अपने आज के सफर का आगाज करते हैं और पेश करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मखमली आवाज में फिल्म सिलसिला का ये अमर गीत।

कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि जो पुराना है वो सोना है। ये कहावत किसी और संदर्भ में सही हो या ना हो, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत के विषय में एकदम सही है। और इसी कड़ी में आपको अब सुनवा रहे हैं गुजरे दिनों का एक चुनिंदा गीत फिल्म मधुमती से। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते और कुछ एहसास होते हैं जो वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। उनकी यादें हर पल हमारी पलकों में रहती हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही मीठे और रोमानी सफर पर। आरडी बर्मन साहब का संगीत, गुलजार साहब की जादू भरे बोल और आशा भोसले जी और अमित कुमार की आवाज। इस गीत का हर शब्द दिल को छू लेता है। आपको सुनवा रहे हैं जीवा फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

जिंदगी एक सफर है जहाँ कुछ लोग मिलते हैं, कुछ रास्ते बदलते हैं, पर जो चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं वो हैं मीठी यादें और प्यारे संगीत। और जब बिछड़ने या अलविदा कहने का वक्त आए तो दिल से बस यही आवाज आती है। अमित खन्ना साहब के दिल छू लेने वाले बोल, बप्पी लाहिरी जी का मधुर संगीत और किशोर कुमार जी की जादुई आवाज, ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास है, एक समंदर है जो कभी भी जुदा नहीं होता। तो दोस्तों, हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं तक, मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त ललिता को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत। नमस्कार।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश गुप्ता के स्वर में ब्रज गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश गुप्ता के स्वर में ब्रज गीत। कार्यक्रम है धरती के गीत। आइए सुनते हैं एक और ब्रज गीत। कलाकार हैं कुमारी रत्ना भौमिक।

0: कार्यक्रम धरती के गीत में आप सुन रहे थे ब्रज गीत। कलाकार थे सुरेश गुप्ता और कुमारी रत्ना भौमिक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में युवा साथी सुनेंगे अपना विशेष कार्यक्रम युववाणी। उससे पहले ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
8: 0542227658।
6: ओ,
5: 0542227658।
6: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658।

0: बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
1: दोस्तों, वक्त कितना भी बदल जाए, लेकिन हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। हाजिर है हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी के साथ, और मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी।
0: और मैं दिव्या, आप सबको हमारा
1: नमस्कार।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी,

0: दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश के हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं और त्योहार हैं। इन्हीं रंग बिरंगी परंपराओं में आज हम आपको बताएंगे त्रिपुरा के एक बहुत ही खास और अनोखे पर्व खर्ची पूजा के बारे में।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, आस्था और लोगों की एकता का भी सुंदर संदेश देता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार हर वर्ष जुलाई महीने में मनाया जाता है और 7 दिनों तक चलता है।
0: ये पूजा मुख्य रूप से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास पुराने अगरतला क्षेत्र में स्थित 14 देवता यानी चतुर्दश देवता के मंदिर में होती है। इस पर्व का विशेष महत्व त्रिपुरा के लोगों की आस्था, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर राज्य के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं।
1: खर्ची शब्द का अर्थ पापों और अशुद्धियों को दूर करना माना जाता है। इस त्यौहार के पीछे यह मान्यता है कि धरती माता वर्ष भर लोगों के पापों और गलत कार्यों का भार सहती हैं, इसलिए वर्ष में एक बार उनकी शुद्धि और सम्मान के लिए यह पूजा की जाती है। इस दिन लोग भगवान को अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी फसल, स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना करते हैं।
0: खर्ची पूजा में 14 देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, इन देवताओं को मंदिर से बाहर लाकर पवित्र नदी या जल में स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान पारंपरिक मंत्रों का उच्चारण, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवताओं के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
1: इस त्यौहार के दौरान बले मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेले में तरह तरह की दुकानें सजती हैं, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने, मिठाइयां और पारंपरिक भोजन मिलते हैं। बच्चे झूले और मनोरंजन के साधनों का आनंद लेते हैं। लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं।

0: करते हैं, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह खुशी का माहौल बनता है। यह मेला स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करता है।
1: बिल्कुल, खर्ची पूजा केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है दोस्तों, बल्कि त्रिपुरा के सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। ये त्योहार लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से जोड़ता है। इस अवसर पर सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं, जिससे आपसी भाईचारे और एकता की भावना मजबूत होती है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें अपने मन, विचार और व्यवहार को भी शुद्ध रखना चाहिए।
0: आज के समय में खर्ची पूजा त्रिपुरा के पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। राज्य सरकार भी इस पर्व को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए विशेष व्यवस्था करती है। इससे स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलता है।
1: दोस्तों, खर्ची पूजा त्रिपुरा की आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का सुंदर प्रतीक है। ये त्योहार हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करने, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहने और समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि खर्ची पूजा त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों में से एक मानी जाती है।
0: दोस्तों, साथ ही हम आज बात करेंगे एक ऐसे अधिकार की जो सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, मतदान का महत्व।
1: बिल्कुल, लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में होती है। एक एक वोट देश की दिशा और दशा तय करता है।
0: सही कहा दिव्या, जब हम मतदान करते हैं तो हम अपने क्षेत्र और देश के लिए योग्य प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को संसद और विधानसभा तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल, और वैष्णवी, कई लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नई चुनाव में जीत हार का फैसला कुछ ही वोटों से हुआ है।
0: इसलिए हर एक वोट अनमोल है। अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो शिकायत करने का नैतिक अधिकार भी कमजोर पड़ जाता है।
1: खासकर युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। युवा जितनी ज्यादा संख्या में मतदान करेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।
0: मतदान करते समय हमें किसी लालच, डर, जाति, धर्म या अफवाह के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी और कार्यों को देखकर वोट करना चाहिए।
1: याद रखिए दोस्तों, मतदान केवल एक दिन का काम नहीं है बल्कि देश के भविष्य में किया गया निवेश है।
0: तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हर चुनाव में स्वयं मतदान करेंगे और अपने परिवार व दोस्तों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे,
1: क्योंकि
0: मजबूत लोकतंत्र की पहचान जागरूक नागरिक और शत प्रतिशत मतदान।

0: दोस्तों कहते हैं कि शब्द जब भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो कविता बन जाते हैं, और कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसे महसूस भी किया जाता है।
1: बिल्कुल, कभी कविता हमें हंसाती है, कभी सोचने पर मजबूर करती है, और कभी जीवन की नई शिक्षा भी दे जाती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को आपके दिल तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं काव्य पाठ, जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं रोहित अस्थाना।
2: सादर नमस्कार, मैं रोहित अस्थाना प्रभव आज आप सभी के समक्ष इस आकाशवाणी के माध्यम से युववाणी प्रोग्राम के तहत अपनी कुछ स्वरचित कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमें पता है कि जो विशेष अवसर अभी बीता है, हिंदी दिवस और आने वाला अवसर स्वच्छ भारत अभियान, ये दोनों अवसर पर मैं अपनी चंद पंक्तियां लिख करके लाया हूं और मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को पसंद आएगी। तो हिंदी दिवस पर मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखता हूं कि हिंदी क्या है। हिंदी की आन बान शान पर जो हमारे विचार हैं, जो हमारे हृदय के भाव हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। सुंदर सहज सनातन भाषा हिंदी अभिमान हमारा है। सुंदर सहज सनातन भाषा हिंदी अभिमान हमारा है। इसी से है पहचान हमारी और हर सम्मान हमारा है। सुंदर सहज सनातन भाषा हिंदी अभिमान हमारा है। इसी से है पहचान हमारी और हर सम्मान हमारा है यही हमारी जीवन शैली, संस्कृति है ज्ञान भी है यही हमारी जीवन शैली, संस्कृति भी है ज्ञान भी है, और यही भक्ति वो प्रेम शौर्य की गाथा का उन्वान भी है, और यही भक्ति व प्रेम शौर्य की गाथा का उन्वान भी है। ना कहीं पर हो जाए विलुप्त ये भाषा, गहन विचार करें। ना कहीं पर हो जाए विलुप्त ये भाषा, गहन विचार करें। गूंज उठे भूमंडल सारा हिंदी की जय जयकार करें। गूंज उठे भूमंडल सारा हिंदी की जय जयकार करें। अगला बंद है भारत माँ के इस स्वरूप का हिंदी ही सुंदर श्रृंगार। है भारत माँ के इस स्वरूप का हिंदी ही सुंदर श्रृंगार। है मूल भावनाओं का ये है यही विचारों का आधार। है भारत माँ के इस स्वरूप का हिंदी ही सुंदर श्रृंगार। है मूल भावनाओं का ये है यही विचारों का आधार। ये वेद उपनिषद महाकाव्य गीता पुराण का सार भी है। ये वेद उपनिषद महाकाव्य गीता पुराण का सार भी है, और आज के इस युग में हिंदी की दुनिया को दरकार भी है। और आज के इस युग में हिंदी की दुनिया को

दरकार भी है, हम इसे संजोकर रखें और इस भाषा का विस्तार करें। हम इसे संजोकर रखें और इस भाषा का विस्तार करें। गूंज उठे भूमंडल सारा, हिंदी की जय जयकार करें। गूंज उठे भूमंडल सारा, हिंदी की जय जयकार करें। हिंदी की जय जयकार करें। और अंतिम बंद में रखता हूँ कि साकार बनाकर स्वप्न राष्ट्र का हम अपना कर्तव्य निभाएं। साकार बनाकर स्वप्न राष्ट्र का हम अपना कर्तव्य निभाएं। लेखन गायन काव्य कला को हिंदी में भी हम दर्शाएं। लेखन गायन काव्य कला को हिंदी में भी हम दर्शाएं। और इसकी मीठी वाणी का सबको स्वाद चखाएं हम। और इसकी मीठी वाणी का सबको स्वाद चखाएं हम। हम लड़े नहीं भाषाओं पर, एकत्व का ध्वज फहराएं हम। हम लड़े नहीं भाषाओं पर, एकत्व का ध्वज फहराएं हम। हम अपनी इसी मातृभाषा का मिलकर प्रभव प्रचार करें। हम अपनी इसी मातृभाषा का मिलकर प्रभव प्रचार करें। गूंज उठे भूमंडल सारा, हिंदी की जय जयकार करें। गूंज उठे भूमंडल सारा, हिंदी की जय जयकार करें। हिंदी की जय जयकार करें। तो हम सभी जानते हैं कि आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान, जो महात्मा गांधी जी की जयंती पर यह आयोजित होता है, महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा देश एक स्वच्छ भारत के रूप में पूरे विश्व में जाना जाए। तो स्वच्छ भारत अभियान पर भी चंद में पंक्तियां आप सभी के सामने रखता हूं। कैसे स्वच्छता आ सकती है, क्या है स्वच्छता, और भारत स्वच्छ किस तरह से हो सकता है, मिल करके हम कैसे ये सारा स्वप्न पूरा कर सकते हैं। भारत माँ की संतान है हम, और ये हम सबकी जननी है। भारत माँ की संतान है हम, और ये हम सब की जननी है। कर्तव्य समझकर हमें भी इसकी हरदम सेवा करनी है। भारत माँ की संतान है हम, और ये हम सब की जननी है। कर्तव्य समझकर हमें भी इसकी हरदम सेवा करनी है। इसके हम पर उपकार अकथ और ममता बड़ी निराली है। इसके हम पर उपकार अकथ और ममता बड़ी निराली है। इसकी ही बदौलत हम सबके जीवन में हर खुशहाली है। इसकी ही बदौलत हम सबके जीवन में हर खुशहाली है। अब ढोंग नहीं सच में इसके प्रति सेवा भाव जगाना है। अब ढोंग नहीं सच में इसके प्रति सेवा भाव जगाना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलकर कदम बढ़ाना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलकर कदम बढ़ाना है। है भारत से अस्तित्व हमारा और हमारी है पहचान। है भारत से अस्तित्व हमारा और हमारी है पहचान। यह राष्ट्र हमारा स्वाभिमान है, इस पर तन मन धन बलिदान। यह राष्ट्र हमारा स्वाभिमान है, इस पर तन मन धन बलिदान। इसकी माटी से प्रेम करें, दिल से इसका सम्मान करें। इसकी माटी से प्रेम करें, दिल से इसका सम्मान करें। और आओ हम सब मिलजुल कर अपना अपना श्रमदान करें। और आओ हम सब मिलजुल कर अपना अपना श्रमदान करें। हर भारतवासी बने जागरूक, अब परिवर्तन लाना है। हर भारतवासी बने जागरूक, अब परिवर्तन लाना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलकर कदम बढ़ाना है। मिलकर कदम बढ़ाना है। हर गांव शहर गलियां सड़कें, हर कोना स्वच्छ बनाएं हम। हर गांव शहर गलियां सड़कें, हर कोना स्वच्छ बनाएं हम। और साफ सफाई को अपनाएं, व्याधि विकार भगाएं हम। हर गांव शहर गलियां सड़कें, हर कोना स्वच्छ बनाएं हम। और साफ सफाई को अपनाएं, व्याधि विकार भगाएं हम। देकर सशक्त भागीदारी हम भारत माँ का कल्याण करें। देकर सशक्त भागीदारी हम भारत माँ का कल्याण करें। हर क्षेत्र में अपने देश की एक बेहतर छवि का निर्माण करें। हर क्षेत्र में अपने देश की एक बेहतर छवि का निर्माण करें। अब गांधी जी के प्रभव स्वप्न को पूरा करके दिखाना है। अब गांधी जी के प्रभव स्वप्न को पूरा करके दिखाना है। स्वच्छ भारत अभी

0: ज्ञान के तहत मिलकर कदम बढ़ाना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलकर कदम बढ़ाना है, मिलकर कदम बढ़ाना है, मिलकर कदम बढ़ाना है। तो इसी के साथ ये दो जो दिवस महत्वपूर्ण हमारे बीच थे, दोनों पर अपने भाव मैंने प्रस्तुत किए। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। और एक गजल भी मैं आप सभी के सामने रखता हूं, वो गजल एक सामाजिक गजल है और उन सभी शायरों, सुखनवरों और गजलकारों को ये समर्पित है जो अपने रचना, अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों तक अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने बयां करते हैं। तो गजल के मैं चंद अशआर रखता हूं। मतलब पेशे खिदमत है कि मुसाफिर हैं यहाँ हर लोग, आते और जाते हैं। मुसाफिर हैं यहाँ हर लोग, आते और जाते हैं, यहीं बनते बिगड़ते अनगिनत रिश्ते बनाते हैं। मुसाफिर हैं यहाँ हर लोग, आते और जाते हैं, यहीं बनते बिगड़ते अनगिनत रिश्ते बनाते हैं। किसी जब मुश्किलों में हम घिरे होते कहीं हैं तब, किसी जब मुश्किलों में हम घिरे होते कहीं हैं तब, हमारे कौन हैं अपने तभी हम आजमाते हैं, हमारे कौन हैं अपने तभी हम आजमाते हैं। और अगला शेर है कि बड़े खामोश रहते हैं किसी से कुछ नहीं कहते, बड़े खामोश रहते हैं किसी से कुछ नहीं कहते, भरा है दर्द सीने में मगर हम मुस्कुराते हैं, भरा है दर्द सीने में मगर हम मुस्कुराते हैं। और ग्रह का शेर देखें कि जमी पर जो बिखेरे रोशनी किरदार से अपने, जमी पर जो बिखेरे रोशनी किरदार से अपने, वही बनकर सितारे आसमां में जगमगाते हैं, वही बनकर सितारे आसमां में जगमगाते हैं। और हर शायरों को समर्पित ये शेर की जहां का आईना है हम, हमारा शौक है लिखना, जहां का आईना है हम, हमारा शौक है लिखना, हम अपने फन के जरिए ही हकीकत को बताते हैं, हम अपने फन के जरिए ही हकीकत को बताते हैं। और मक्ता पेशे खिदमत करता हूं, भले रोता रहे ये दिल हमारा हर घड़ी रोहित, भले रोता रहे ये दिल हमारा हर घड़ी रोहित, मगर रहते जहां हैं हम वहां सबको हंसाते हैं, मगर रहते जहां हैं हम वहां सबको हंसाते हैं, सबको हंसाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी कविताएं सुनी और गजलें सुनी। आशा है कि इससे हम सबको हिंदी से प्रेम करने का और स्वच्छता बनाए रखने, और साथ ही साथ एक शायर, एक कवि अपनी भावनाओं को कैसे रखता है उसको समझने की एक उम्मीद नजर आई होगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रोहित अस्थाना, इतनी अच्छी कविता प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत।

0: दोस्तों कहते हैं ना कि शब्दों को जो समझ ले वह रूह लेता है, वरना ये लफ्ज़ बस हवा में खो जाते हैं। और इसलिए तो रोज़ाना हम अपने यूथ को यूथ डायरी के शब्दों से रूबरू कराते हैं।
1: बिल्कुल। और आज का हमारा हिंदी शब्द है विनियम, जिसका मतलब होता है किसी सरकार, प्राधिकारी या संस्था द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक नियम या आदेश होता है जो किसी प्रक्रिया या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। और अगर हम इंग्लिश में कहें तो विनियम को इंग्लिश में कहा जा सकता है रेगुलेशन। और इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे नियम, व्यवस्था, प्रावधान, अनुशासन, नियंत्रण। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मुद्रा के न होने पर लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के विनियमों का पालन करना चाहिए।
0: दोस्तों हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है अंडरमाइन, UNDERMINE, और इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग वीकर। इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची हैं ग्रेजुअली वीकनिंग, डैमेज और सबवर्ब समवन और समवन्स फाउंडेशन, अथॉरिटी और स्टेबिलिटी। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा शी ट्राइड टू अंडरमाइन माई मैनेजमेंट बाय कंप्लेनिंग डायरेक्टली टू द रीजनल डायरेक्टर बिहाइंड माई बैक। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा भी है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं।
1: सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था।
0: दोस्तों 21 जुलाई को ही प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यास अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जयंती भी मनाई जाती है। उन्हें साहित्य के क्षेत्र

0: में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
1: साथ ही विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे के आयोजन की तैयारियां के संदर्भ में 21 जुलाई का भी स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में उल्लेख किया जाता है।
0: 2011 में आज के ही दिन नासा का स्पेस शटल कार्यक्रम अंतिम मिशन STS-135 के साथ समाप्त हुआ।
1: तो दोस्तों, अब बारी है इतिहास। ये इतिहास जो होती है, ये हमें नई ऊंचाइयों को छूने और अपने सपनों को पूरा करने का प्रेरणा देता है।
0: दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की तरफ से आई है, जिसने प्रोबेशनरी ऑफिसर PO मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें, इस भर्ती के तहत 6000

0: किया है। आपको बता दें, इस भर्ती के तहत 6,715 पदों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
1: वहीं आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन की प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देश के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इसकी आखिरी तारीख है, तो ध्यान से अगर आपसे मिस हो गया है तो आप जल्दी जाइए और आज ही रजिस्टर कर लीजिए।
0: दिव्या, अब अपने दोस्तों का इंतजार खत्म करवाते हुए पहले कल के प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न आपसे ये था कि भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज के FIDE रेटेड खिलाड़ी कौन है, और इसका सही उत्तर है सर्वज्ञ सिंह खुशवाहा। और जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है वो है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, रवि मौर्य सिमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से हैं, और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से श्यामा बाई रायकवार हैं। तो आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई।
0: वूहू, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न आपसे ये है कि डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जुलाई 2026 में किस संगठन ने ई कॉमर्स ऑफ इंडिया ECCI की शुरुआत की है। आप अपने सही जवाब हमें हमारे इंस्टा हैंडल youth AIR या हमारे ईमेल youth AIR VNS@gmail.com पर भी दे सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देती हूँ, ईमेल youth AIR VNS@gmail.com।
1: तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपको ये तो पता ही है कि हर गुरुवार हम आपके लिए यूथ जंक्शन लेकर आते हैं। तो इस गुरुवार जो है उसका विषय होगा, कौन सा त्यौहार सबसे प्रिय है और क्यों। तो आप ज़रूर इस गुरुवार 11:30 बजे हमें कॉल करिएगा और हमसे बातचीत भी करिएगा, और आप साथ में अपने फरमाइशी गीत भी सुन सकते हैं।
0: जल ही जीवन है, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य के जीवन के लिए जल सबसे आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम पीने, खाना बनाने, नहाने, सफाई करने, खेती करने और उद्योगों में भी पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए जल हमारे जीवन का आधार है। आज बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और पानी की बर्बादी के कारण स्वच्छ जल की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि हम आज से ही पानी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए जल संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और जल स्रोतों जैसी नदियों, तालाबों और झीलों को साफ रखना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर भी हम जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि पेड़ वर्षा को बढ़ावा देने और भू जल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं।
0: सरकार के साथ साथ हर नागरिक को जल बचाने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हर व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा पानी बचाए तो यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए।
1: और

वो कहते हैं ना दोस्तों, जल है तो कल है। पानी प्रकृति का अमूल्य उपहार है, इसीलिए इसकी एक-एक बूंद की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले सकते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको सुरक्षित भविष्य का निर्माण करके देंगे। क्योंकि सच तो यही है कि जल ही जीवन है। तो दोस्तों, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज के लिए युवाणी की तरफ से बस इतना ही। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही रोज युवाणी सुनते रहिए। आज के लिए मैं वैष्णवी
1: और दिव्या को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव वाणी, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भविष्य में परीक्षण में पेपर लीक रोके बदे सज्जो संबंधित पक्षन से मिलके कोशिश कैले का आवाहन कैले हमें। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठकी के बादे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू बतौलें कि श्री मोदी परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ेर कार्रवाई कैले आ देश के नौजवानन के हितन का रक्षा कैले के सरकार के संकल्प के दोहरौलें।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज भईल प्रदेश कैबिनेट के बैठकी में लोकहित का कई गो महत्वपूर्ण फैसला कैल गए। एगो रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन छात्राओं को ही मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो। दिव्यांगजन, निराश्रित परिवारों और शहीद परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में 352 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 70 विकास परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहने कि बहराइच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन चुकल बा।
3: आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है तब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है चौथी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान।
0: मुख्यमंत्री अजय श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 83 परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भइले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कहीं कहीं अनियमित बरखा से पैदा भइल सूखा का समस्या आ कुछ जगहिन पर ढेरे बरखा से संभावित बाढ़ के चुनौती के लेके काल लखनऊ में एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकी कैले। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि बाढ़ होके चाहे सूखा हर मनई का सुरक्षा, किसानन का फसल आ लोगिन के आजीविका का रक्षा राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता हो। केंद्र सरकार ओ सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन कैले हो जेमें दावा कैल गेल रहल कि काल्हि दिल्ली में भइल प्रदर्शन के दौरान एगो लड़की का ओहिजुक में मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय का तथ्य जांच इकाई साफ कैले हो कि दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़ल कौनो मौत नहीं भइल बा। प्रदेश के ज्यादातर जिलन में रुक रुक के हो रहल बरखा से नदियन का जलस्तर तेजी से बढ़ रहल बा। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी आ अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरा के चिन्ह के लगे पहुंच गई हो।

0: वहीं उत्तराखंड में पहाड़न पर लगातार हो रहल बरखा के नाते पीलीभीतों में शारदा नदी का जलस्तर ढेरे बढ़ गई बा। एह बीचे बरखा आ जतरा वाले राहिन पर भूस्खलन के आशंका के नाते उत्तराखंड में काल ही स्थगित कैल गई चार धाम जतरा आज फिर से शुरू हो गई। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। समय हो चला है आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

पहले सुनिए आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। रात 8 बजे होगी संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे पंडित चितरंजन ज्योतिषी। समय होगा रात 10:30।

लोक संगीत में कलाकार होंगे हेमंत कुमार श्रीवास्तव। समय होगा शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। इसी कार्यक्रम में बातचीत का विषय होगा मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। जानकारी देंगे तारा चंद्र बैरवा। समय होगा शाम 6:30।

शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग। रसमाधुरी का समय होगा रात 8:15। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम होगा अंजुमन। समय होगा रात 9:30 पर।

ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात 8 बजे होगी संसद समीक्षा। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के प्रसारण का समय होगा रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगी विद्या काटगड़े। इनके स्वर में गायन आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे दोपहर 12:45 पर सितार वादन। कलाकार होंगे नीरज मिश्रा। सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भजन। कलाकार होंगी महुआ बैनर्जी। समय होगा दोपहर 12:30। इसी कार्यक्रम में रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे गजलें। कलाकार होंगे अनूप जलोटा। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे महेंद्र सिंह यादव और साथी। समय होगा सुबह 9:50, दोपहर 1:45 और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत में बातचीत का विषय होगा कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र। जानकारी देंगे विनोद कुमार सिंह। समय होगा शाम 6:30।

ये थी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे बेनी दयाल की आवाज में फिल्म टू स्टेट्स से। संगीत था शंकर एहसान लॉय का, शब्द थे अमिताभ भट्टाचार्य के। कार्यक्रम का दूसरा गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के उस पार।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते

0: हैं विज्ञापनों की बुकिंग,
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

फिल्म थ्री इडियट्स के गीत आप सुन रहे थे शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज़ों में। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जो हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भावि परीक्षासु प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं निवारयितुं समन्वित प्रयासानां कृते आह्वानं विहितम्। नीट प्रश्नपत्र प्रकटन दोषिणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय प्रशासनस्य दृढ संकल्पः पुनरावर्तितः। विपक्षस्य विरोध कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अद्य स्थगितम्। सिक्किमस्य नामची मण्डले निर्माणाधीनस्य सुरंगस्य निपातेन एकादश जनाः मृताः, बहवः सम्प्रति अन्तः निरुद्धाः सन्ति। आपतोद्धार कार्यं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारतोत्तर मैसोडेनिया देशौ व्यापार विस्ताराय तथा प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकर्तुं सहमतौ अभवताम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया स्कोप्ये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता, अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटन रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्त व्यापार सन्धिषु भारतीय कृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद भवनस्य प्रावृत सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरंतर कोलाहलेन आगामी दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः एकादशवादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रश्नकालस्य संचालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षिसदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य संचालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्न द्वादशवादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना संध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभा मध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत्।

0: बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन संचालनाय पुनः आग्रहम अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धार कार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावद् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुम् उक्तवान्। सम्प्रति नामची मण्डल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारिभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरं आपतोद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढं अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: अस्य मासस्य 21 दिनांके एम वी गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातक आक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्य मंत्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषण प्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिक कार्य मन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखण्ड राज्ये अश्रान्तं जलवृष्टेः तथा यात्रा मार्गेषु संभाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधाम यात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मण्डल प्रशासन आरक्षीय बलेन अथ अन्याधिकारी वर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारु रूपेण संचाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्या क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डाम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।

0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। नंदू भैया,
0: हाँ जीतन भैया,
1: अरे का हाल चाल बा खेती किसानी को हो?
0: ये भैया हो कुल हाल चाल ठीक बा? अपनो ठीक है, खेतियों किसानी का हाल चाल ठीक बा? देखा भैया, हम अपन रोप देले है। हाँ, आ यह कहब कि भाई पंच लोग जे अबही जोन है तनी मनी एहर और अनमनात हुआ, तो देखा खेत उठ गल हो फटाक से जोन है जोतवा के भैया आ जोन लेव लगा के रोपवाई करा
1: हाँ,
0: दे।
1: देखा भैया, नंदू भैया कहा थी ना कि दऊ के पानी के जो है ना भाई, जगह साधन हो, नहर के साधन बा, समरसेबल बा, उसे अपन रोपनी पनी करा लें ताकि खेती जो है ना समय पे हो जाला तो बड़ा सही रहला
0: हाँ
1: हो।
0: बिल्कुल भैया, समय बड़ा सही हो। आ देखा दऊ क कृपा दृष्टि भी अब देखल जाए तो बरसत हो। आ एक चीज ही है ना कि देखा अभी दऊ बरसत हो तो किच किच तो हो ही गल बा
1: हो ही गल बा।
0: अगल। आ एम्मा भाई तनी संभर के रहे के, अभी देखा झगड़ू भैया के गल रही है देखे बतावत रहना कि भाई अही तनी हो गल रहल कीचड़ आ सिवाने उरी जात रहिए सड़क गल आ गोड़ जोन है तनी सी वहाँ प्लास्टर लगाओ के पड़ल। तो
1: अच्छा
0: यह कहल जी जितन भैया कि भाई खेती किसानी करे बदे डाणे गोड़े जा, खेते सिवाने जा, लेकिन बड़ा ध्यान से, काहे के घड़ी बरसात में
1: बात बचा के।
0: फिसलन बहुत होत है भैया।
1: देखा भैया, ये उम्रो ऐसा होला ना, जौन कहलन बुजुर्ग होलन तो वो उम्र में उनके ज़्यादा दिक्कत होने के चांस रहेगा।
0: तो ये कुल का ध्यान दे भैया, खेती किसानी से बढ़ के देखा भाई ए घड़ी देखल जाए तो कुछ ना हो, काहे कि अब जोन है पहले से बड़ा बदलाव आ गल है। पहले खेती किसानी के लोग समझें कि ये देखा घाटे का सौदा है। तो अब जोन है नई नई तकनीक से जोन है बड़ा बढ़िया विकास हो गल भैया खेती में।
1: जो नंदू भैया तू कहला ना, तकनीक का मतलब यह है कि अपने खेते में खाली एक का फसल ना लगावा और उसमें करे का जिसे फसल चक्र अपनावा के चाहिए और जोने में
0: तो सही कहला भैया, फसल चक्र का बात कहला तो विज्ञानी लोग भी कहे ना ये बात के। अब पहले का अपन जोन है बूढ़ पुरनिया पुरखा पुरनिया भी ये बात के कहले
1: कहेले।
0: हुआ कि खेती जोन है तरीके से करे, आ ई ना कि माने एक का लकीर का फकीर बनल रहे।
1: नहीं।
0: अगर गेहूं लगाते तो गेहूँ लगावत रहो खेते में, आ धान करत है तो धान करे नाही, एकर
1: देखा
0: ध्यान दे।
1: देखा नंदू भैया, ये फसल चक्र अपनइले से बहुत फायदा होला। माटी का उर्वरा शक्ति बरकरार रहला, कीट और रोग के प्रकोप कम होला,
0: बिल्कुल भैया।
1: रासायनिक खाद पर निर्भरता घटला।
0: हाँ देखा कहला ना रासायनिक से निर्भरता घटेला, तो ओकर कारण यह है कि भैया हो ऐसा ऐसा अपने यहाँ फसल बाणी कि अगर उनके लगा लेते हो। अब जैसे देखा दाल वाली फसल हो गई, चना हो गल, मूंग हो गल, ए तरह का चीज हो गल जोने में दू दाल होत हो, तो उम्मा सामान्यतः विज्ञानी लोग कहे ना भैया कि हो इम्मा जोन है राइजोबियम नाम का जीवाणु होला। आउ जीवाणु जान तो भैया काम का करेला,
1: क्या करेला भैया?
0: यही अपने हवा में से जो नाइट्रोजन होला ना ओके खींच लेला।
1: अच्छा।
0: हाँ जैसे हमहन अपने शरीरी में अपने नाक से हवा खींची ला जा, खींच के ऑक्सीजन उम्मा से फेफड़ा की ओरी चल जाई आ खून में जाई आ खूब बढ़िया से मिल के ऑक्सीजन खून का दौड़ा करावेला, तो हमन का शरीरों जोन है दौड़ेला।
1: दौड़ेला।
0: हाँ तो ई जोन राइजोबियम है ओकर जीवाणु हन उहो यह काम करे ना, उ करिए का खींच ली हाँ आ खींच के ओ फसल के जड़ में ओ नाइट्रोजन के रोक दी हाँ। और रोक दिए भैया तो जाहिर सी बात है कि माटी में जाइबे करी।
1: जाइबे करी
0: हाँ आ जब जाई तो का हुई
1: तब भाई तो ओकर उर्वरा शक्ति बनल रही,
0: बनल रही
1: उपजाऊ
0: आ
1: रही।
0: नाइट्रोजन का मात्रा कम देवे के हुई
1: कम
0: भैया,
1: देव
0: जोन
1: कोई।
0: कहला ना कि रासायनिक खाद पे निर्भरता घटे ले,
1: हाँ, वही
0: तो यही
1: वही।
0: बदे घटे ले कि उम्मा नाइट्रोजन मिल जाता, तो मिल जाता तो यूरिया कम डाले के
1: कम डाले
0: हुई
1: पड़ी। और
0: आ
1: यह नहीं
0: काम
1: भैया,
0: बढ़िया हुई।
1: नंदू भैया,
0: हाँ
1: यह
0: भैया।
1: नहीं, देखा हो पानी के बेहतर उपयोग भी होला।
0: हाँ तो सही चीज़ कहला भैया कि देखा अब जैसे अपन यह खरीफ के समय में धान हो, धान के जनता हुआ कि ज़्यादा पानी चाहेला। हाँ लोग
1: पनिये
0: कहे
1: वाला
0: ना कि
1: फसल है।
0: जड़ एकदम जौन होकर सोर डूबल रहे तब बढ़िया धान हुई कल।

0: तैयार हुई। अब भैया ओकरे बाद कहल जाला कि फसल चक्र के हिसाब से कम पानी वाली फसल के लगा दा, जैसे चना हो गल,
1: चना होगा,
0: हाँ सरसों हो गल।
1: सरसों।
0: तो ऐसे हुई का भैया किन्हन के पानी कम चाहेला, तो जौन अपने खेत में पानी ज़्यादा लगल है धान के बाद, वो कम में पानी से जौन है तुहार सरसों और चना काम हो जाए, उनके पानी की जरूरत ना पड़ी,
1: ना
0: एकाक पानी फुहार ऊपर से दऊ का मिल गल, तब वही से काम हो
1: तब
0: गल।
1: वो हो जाएंगे।
0: तो कुल बहुत सही सही ई व्यवस्था बनल रहल है। यही का जौन है भैया इस्तेमाल अगर आओ के लोग लागू कर लें अपने खेती किसानी में, तो बड़ा काम हो जाए भैया।
1: सही कहला भैया, जिसे बतीला ना कि देखा, हमेशा देखा याद रखना चाहिए कि बार बार फसल, एक फसल लगने से मट्टी कमजोर हो
0: हाँ
1: जाला,
0: भैया
1: और अगर ओके बदल बदल के खेती करीहन तो समझ लो खेती के बहुत लाभ होई और अपने के
0: भैया
1: भी लाभ होई।
0: एकदम सही कहला। जैसे कि बदल बदल के करे में एक यो चीज़ बा कि विज्ञानी लोग भी कहें ना कि भाई देखा पहले अगर ज़्यादा जड़ वाली अगर कोनो फसल लगौले है तो ओकरे बाद कम जड़ वाली लगा दे। तो जौन ज़्यादा शोर जौने का फैलल रही तो माटी के खूब बांध लेही, फिर कम वाले के कह दही। तो ऐसे कहा रंध्रा क्रास जौन ओके कहल जाला कि उमा हवा पानी जौन जाले बढ़िया से माटी के अंदर, ओकर जौन है संचार बहुत अच्छा से हो जाई। तो ये विज्ञानी लोग बहुत सही चीज़ कहले हुआ आ ओके माने के चाही सबके किसान के, तब जौन है जा कर के सही तरीके से भैया हो खेती किसानी आपन हो पाई। आ जौन लोग कहे ना कि खेती किसानी से जौन है कुछ पहले कहावतों तो रहे कि जौन मन हो तो उन्हें बोदा, हाँ
1: हाँ भाई,
0: और वो
1: जानकारी ना
0: उपजी तो
1: रहल।
0: आदमी के कुछ न कुछ तो मिली, लेकिन नहीं एके ध्यान देवे के सही तरीके से विशेषज्ञ लोगन का बात माने। आ हम हन हो देखा जितन भैया अपने
1: नंद भैया।
0: पंचायती में भी विशेषज्ञ लोग के बुलाई ला जा कि बढ़िया से बढ़िया वो जानकारी
1: भाई
0: देना
1: किसान की जानकारी अच्छे से मिले।
0: कि कैसे माने अच्छे से खेती करे।
1: देखा यही से कहल गला ना भैया कि फसल चक्र अपनाई, माटी
0: हाँ
1: बचाई, उपज बढ़ाई और खुशहाल किसान के बनाई।
0: हाँ तो दे सरकारों चाहत किसान खुशहाल हो और उनका आमदनी भैया दुगना हो। हाँ तो एक कुल चीज़ का ध्यान दे आ फसल चक्र के साथ एक चीज़ और आमदनी बढ़ावे बदे हो ना कि मेड़ियों पे पेड़ लगावे। हाँ
1: काहे नहीं भैया, लगाई चाहिए।
0: प्रधानमंत्री जी भी अपन कहले हुए कि भाई अगर 4 ठे 5 ठे इमारती लकड़ी का पेड़ लगा देता जगह देख के, आई बरसात का मौसमों हो आई घड़ी भैया वृक्षारोपण के सब ही कहत हो
1: सब
0: कि
1: कोई कर।
0: खूब वृक्षारोपण करा ताकि जो है अपन क्षेत्र जो है भैया भारतवर्ष
1: हरियाली
0: हरा
1: बनल
0: भरा बनल
1: रहा।
0: रहे, पर्यावरण जो है सही रहे, तो एकर ध्यान देवे के होई, पर्यावरण के अच्छा करे के होई।
1: सही कला, पेड़ लगाओ बहुत जरूरी है।
0: हाँ तब्बे जो है साफ सुथरा हवा जो है मिली भैया, स्वास्थ्य भी ठीक रही।
1: हाँ सही कला नंदू भैया। देखा हो ते बात बात कही होता रही ते किसान भाई लोगों के सने सुनवा दे बोल जा।
0: हाँ सुनवावल जा सने सही।
2: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जितन भैया,
2: आनंद भैया,
1: देखा हो सनेश तो सुन लेना किसान लोग। आ एक चीज और हमन एक और सनेश अपने बतकही में देहली है जा कि भाई फसल चक्र के हिसाब से जो अपन खेती किसानी करें तो उनके बड़ा बढ़िया उत्पादन मिली। इस समझे की हुई भैया हो कि जैसे देखा माटी के जांच भी लोग कहें ना कि माटी के जांच बरोबर करावत
2: रहे,
1: तो ऐसे पता चल जाए कि भाई कौने तत्व का जो है अपने माटी में कमी है, और जेकर कमी हो ओके उतना जो है भैया वो तत्व दा, तब तो सही तरीके से संतुलित रही माटी, और नहीं तो नुकसानी हुई ज्यादा। अगर अति हर जगह ना ठीक हो तो इंजो ना ठीक हो, माने झोंके के ना मार रासायनिक खाद वगैरह।
2: तो नंदू भैया,
1: हाँ
2: आज आज के हमने के देखा पंचायती में तो हमने एक अखे विषय पे देखा,
1: हाँ,
2: बतकही लिया ही ला।
1: बतकही होले
2: आज के देखा बतकही जो ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, ये विषय पे देखा बतकही करी हैं हमारे सतीश कुमार यादव भैया, ताराचंद बैरवा

0: हाल उन भैया उनसे बात
1: उनसे
0: कही
1: बती
0: सुनवा दो,
1: हैं
0: बोले
1: तो
0: हैं किसान भाई
1: सुनवावल
0: की।
1: जाए बत कही।
2: आज हमने लोगों के बीच में आयल हैं डॉक्टर ताराचंद वैरवा, जे की कार्यरत हैं कृषि विज्ञान केंद्र भदोही में। किसान भैया, आज इनसे हमने लोग जानल जाई कि मिट्टी को उर्वरा शक्ति जवन है ओके कैसे बढ़ावल जा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तो डॉक्टर साहब, हमारे देखिए किसान भैया लोग भाई हर समझ रखेला लोग, लेकिन कहीं कहीं ये भी दिक्कत आवेला उन लोगों के कि भाई अपन जो माटी है ओकर उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ावल जाओ कि हमने के ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भैया लोगों के आप ये बताएं कि उर्वरा शक्ति से वो लोग का समझे अपनी माटी बदे और ओके लोग कैसे बढ़ाएं।
3: देखिए, ये किसान भाइयों बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम चर्चा करना जा रहे हैं आपसे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का मतलब सीधा ये है कि जो आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं। उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कई सारे तरीके हैं। सबसे
2: जैसे
3: पहले बात करें मृदा परीक्षण की।
2: अच्छा
3: मृदा परीक्षण कराना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। मृदा परीक्षण से आपके खेत में कौन सा पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में है, किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, उसका सटीक पता चलता है। जो मिट्टी परीक्षण है वो बहुत जरूरी है, आपको कराना चाहिए।
2: आपके हम रोकल चाहब डॉक्टर साहब, जैसे आके आप कहते हैं कि मृदा परीक्षण जरूर कराएं, तो उकरी बदे वो लोग कहाँ जाएं, कैसे उनके पता चले कि हमके मृदा परीक्षण करावे के हो और कौन विधि से करावे का, एकरी बारे में तनी बताई किसान भैया उनके।
3: देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है सर। मृदा परीक्षण है उसको कराने, अगर आपको अपने खेत का मृदा परीक्षण करवाना है तो आपके समीप कृषि विज्ञान केंद्र पर आप अपना मृदा परीक्षण करवा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग ऑफिस होता है, वहां भी जाके आप अपना मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित है, वहां पे आप मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं।
2: जो दूसरी बात आप बताओ तो अब बताएं।
3: जी, दूसरा यह है कि जैविक पदार्थों का उपयोग आपको अधिक से अधिक करना है। जैविक पदार्थों में बात की जाए तो देसी खाद, सड़ी गोबर की देसी खाद का आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। कच्चे गोबर का खाद आप खेत में इस्तेमाल न करें। आपको हरी खाद के रूप में सनई, डेंचा, गुआर, मूंग, लोबिया, इस प्रकार की जो दलहनी फसलें हैं उनको उगाकर आप अपने खेत में पलटाई करके जब 1.5 से 2 माह की हो जाए, जब पुष्प अवस्था उसमें आने लगे, तब आप उसकी पलटाई करके उसमें हरी खेत में दबा देंगे और उसमें एक बार हल्का पानी दे देंगे तो 10 से 15-20 दिन में अच्छे से सड़के वो आपका जीवांश खाद का काम करेगा। इसको हरी खाद बोलते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कहते नहीं कि कच्चा गोबर के प्रयोग ना करें,
3: जी
2: बहुत से लोग देखे में आवला कि जैसे अपने ये मान लो गर्मी का मौसम अभी चल जो
3: जी
2: चलत रहा खेत खाली रहत है, या ठंडी के मौसम में भी जब खेत खाली रहेला तो का करिए कि गोबर अपन इकट्ठा करिए और ले जाके खेत में डाल दी है, तो का जो आप कच्चा गोबर कहत रही है इसे का नुकसान हो सकेला किसान भैया लोग के और मिट्टी बदे भी, एक बारे में तनी बताएं।
3: देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। कच्चा गोबर डालने से किसान भाइयों आपके खेत में दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। आप
2: अच्छा
3: देख रहे होंगे कि जब आप अपने पशुओं का जो गोबर आप खेत में जब सीधा डाल देते हैं तो पशु जब हरा चारा खाता है, घास वगैरह खाता है, तो उसके साथ साथ हम सूखा चारा भी उसको डालते हैं, तो सूखा चारा है जो गोबर के साथ में अपने खेत तक पहुंच जाता है। और जब फसल अवशेष खेत में रहेगा तो उसमें दीमक लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा ये है कि जो पशु को हम जो चारा डालते हैं उसमें कुछ खरपतवार के रूप में हम हरा चारा डालते हैं, तो जो खरपतवार के बीज होते हैं वो बीज भी गोबर के साथ में, कच्चे गोबर के साथ खेत में पहुंच जाता है, तो आपके खेत में खरपतवार उगने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। इसलिए आपको कच्चा गोबर कभी नहीं डालना चाहिए। गोबर को अच्छे से सड़ा के जब 6 से 7 महीने पुराना हो जाए, वो सड़ाने के लिए आपको छायादार पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसमें आपको इकट्ठा करते रहना है और उसमें हर 1-1.5-2 महीने में आपको उसमें हल्का पानी देते रहना है, जिससे कि वो 6-7 महीने में अच्छे से सड़ जाए। जब सड़ जाए उसके बाद में आप अपने खेत में उसको डाल के मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं।
2: अच्छा, और फसल चक्र के बारे में भी आप बताओ जाते नहीं है वो कहा।
3: हाँ, फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा है जो बनी रहती है। आप लगातार एक ही प्रकार की फसल लेते हैं। एक ही प्रकार की फसल का मतलब यह है कि फसलें 2 प्रकार की है, एक तो दलहनी और एक है दलहनी। तो

0: दलहनी फसलें में जैसे आता है आपका धान, यहाँ पे मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसल ली जाती है, तो इसके बीच बीच में आप है जो आपको दलहनी फसलें भी लगानी चाहिए। दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती है और उन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो
1: अच्छा
0: क्या करता है वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको एकत्रित करके मिट्टी के अंदर उपलब्ध कराने का काम करता है, जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट फसल होगी वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपना फसल बढ़वार अच्छे से कर सकती है। इसलिए आपको बदल बदल कर फसल बोनी चाहिए, इससे आपके खेत में कार्बनिक स्तर भी आपका बढ़ता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, देखे में आवला कि भाई लोग खेती करत हम, वो चाहे सब्जी का खेती हो या अपने मुख्य फसल जो आप कहत रही हो वो भी खेती करत हूँ, तो उनमें बहुत देखे में ये आवला कि मतलब खाद बहुत ज्यादा प्रयोग कर दिया, खाद का बहुत ज्यादा डोके डाल दिया, तो क्या ऐसे फसल के फायदा होता कि नुकसान होता, और मिट्टी के का ऐसे नुकसान है, एकरी बारे में बताएं।
0: हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है सर। ऐसा है किसान भाइयों कि रासायनिक उर्वरकों का आप अधिक इस्तेमाल करने से कभी आपका फसल उत्पादन नहीं बढ़ता है, ये हमारी जो धारणा है ये बहुत गलत है। आपको सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित मात्रा का मतलब ये है कि समस्त पोषक तत्व का आपको जो इसमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, इस प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आपको समावेश फसल में करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप जो संतुलित उर्वरक प्रयोग की बात करते नहीं कि संतुलित रहे के चाहे, तो किसान भी ये लोग मान ली सब तो पढ़े लिखल है ना, कुछ
0: हाँ
1: लोग ऐसा भी हों जिनके लोग बता देना या वो अपने समझ से करे ना, तो क्या एमए भी कोनो कुछ आधार है या कुछ जानकारी का
0: हाँ
1: स्रोत है का कि वो लोग संतुलित कैसे समझ सके कि एमए कितना हमके डालब तो संतुलित रही।
0: बहुत अच्छी बात है सर, पूछा आपने क्वेश्चन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का परीक्षण बहुत जरूरी है। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद में आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है,
1: अच्छा
0: और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको आपके खेत में कितना, कौन सा पोषक तत्व, कौन सा रसायन कितनी मात्रा में डालना है, वो सारी जानकारी उसमें लिखी होती है। उसके आधार पे ही आप अपने खेत में कम से कम उर्वरक का प्रयोग करें, जितना उसमें दिया होगा उतना ही आप प्रयोग करिए। अधिक मात्रा डालने से आपके फसल उत्पादन नहीं बढ़ता है, ये हमारी गलत सोच है। ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये एक आधार है, इसके आधार पे आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं।
1: मैंने कि मृदा कार्ड के हिसाब से चलल जा,
0: जी
1: तो जे भाई जानकार है चाहे कम भी जानकार है,
0: जी
1: तो वो हिसाब से उचलित होकर संतुलित उर्वरा शक्ति अपने खेत में वो अपनी फसल में रख सके।
0: रख
1: तो
0: सकते,
1: अच्छा, फसल अवशेष का भी लोग कुछ ऐसा वैसा भी प्रबंधन कर देना जोना से बड़ा नुकसान भी हो जाला, तो एकरी बारे में बताएं कि वो लोग फसल अवशेष का प्रबंधन कैसे करें।
0: किसान भाइयों आप लोग यहाँ पे मुख्य रूप से धान और गेहूं लगाते हैं, तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि फसल अवशेष जला देते हैं। फसल अवशेष जलाने से आपका जो मिट्टी है वो ऊसर होता जा रहा है, बंजर होता जा रहा है, आपका जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो कम होता जा रहा है। तो आपको कभी भी फसल अवशेष नहीं जलाना है, उसको आप सड़ाकर अपने खेत में देसी खाद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप डिकम्पोजर नामक एक मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो जो आपका फसल अवशेष है उसको सड़ाने का काम करता है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो 100 ml का जो डिकम्पोजर है उसको 200 ml आप लीटर में साफ पानी में उसको घोल के, और उसमें 1 से 1.5 किलो आप है जो देसी गुड़ उसमें डाल दीजिए, 10 से 15 दिन के लिए उसको किसी छायादार पेड़ के नीचे उस टैंक को रख दीजिए।
1: अच्छा
0: जब आप उसको 15 दिन के लिए छोड़ देंगे, उसमें हर 2-3 दिन में एक बार, 1 या 2 बार है जो डंडे को थोड़ा हिला दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से सड़ जाए। सड़ने के बाद में उसमें से 5 लीटर निकालकर आप 15 लीटर, 10 लीटर पानी में मिलाकर आप उसका उस फसल अवशेष पे छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा अगर आप 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार करते हैं तो आपका जो फसल अवशेष वो अच्छे से सड़ के देसी खाद का काम करेगा।
1: तो मतलब 15 15 दिन पे उपकर छिड़काव कर
0: जी
1: दें लोग,
0: जी
1: और उसके बाद वो केले जाके अपने खेत में फैला दें।
0: बिल्कुल
1: अच्छा और का सुझाव दिया चाहो हमारे किसान भाइयों
0: इसके
1: को?
0: अलावा जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है बढ़ाने के लिए, आप जैव उर्वरक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैव उर्वरक में बात की जाए तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, PSB है, फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फॉस्फेट घोलक जो बैक्टीरिया होता है वो भी उस

0: जो मिट्टी में जो पोषक तत्व पहले से विद्यमान है, यहाँ पे क्या करते हैं कुछ किसान भाई डाई का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, डाई आपके खेत में ऑलरेडी पड़ा है तो उसको ये जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, ये घोलकर पौधे को उपलब्ध कराने का काम करते हैं।
1: तो एकरी बारे में और बताएं कि उलुक कैसे समझें और कैसे एकर प्रयोग करें।
0: देखिए बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक जो है उसको आप

0: जैव उर्वरक जो है
1: हम्म,
0: उसको आप बीज उपचार के माध्यम से भी आप मिट्टी में प्रवेश करवा सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसके अलावा आप है जो इसका आप सीधा फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो बायो फर्टिलाइजर है, जैसे मान लीजिए आपका 200 ग्राम का पाउच है, उसको आप 100 लीटर पानी में घोलकर उसमें गुड़ डाल दीजिए। उसमें जब अच्छे से जब वो सड़ जाएगा, उसके बाद में आप उसको खेत में सीधा प्रयोग करेंगे पानी के माध्यम से। जब आप खेत में पानी देते हैं तो पानी के माध्यम से पूरे खेत में वो फैल जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि वो सूक्ष्म जीव है जो आपकी मिट्टी में प्रवेश कर जाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और आपकी मिट्टी में जो पहले से जो रासायनिक पोषक तत्व विद्यमान है उसको वो घोलकर उसको पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है।
1: एकरी अलावा भी कोनो विधि लोग अपना सके न का?
0: हाँ, इसके अलावा आप मल्चिंग भी अपना सकते हो। मल्चिंग का मतलब ये है कि जो आपके फसल अवशेष है उसमें कुछ खेती आप जैसे सब्जी वगैरह की कर रहे हैं, तो सब्जी क्या है कि मेनली मेड़ पे लगाई जाती है, तो बीच बीच में जो खाली जगह होती है उसमें फसल अवशेष आप रख सकते हैं, जिससे कि उसमें पर्याप्त नमी भी बनी रहेगी, उसमें खरपतवार प्रबंधन भी बना रहेगा, खरपतवार आपका नहीं उग पाएगा। तो इस प्रकार का तरीका भी आप इसमें अपना सकते हैं,
1: अच्छा, और खरपतवार खाद के भी रूप
0: खाद के रूप
1: में
0: में।
1: प्रयोग कर सकेला? तो मतलब कि ये तरह से अगर लोग ध्यान दें, ये तरीका के अपनावा जौन कि आप डॉक्टर साहब बताई नहीं, तो अपने मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ावल जा सकेला। तो डॉक्टर ताराचंद्र वैरवा जी, आप हमें लोगों के कार्यक्रम कृषि जगत में नहीं एक बदे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया,
3: जितन भैया, वो देखा कितना फरिया के जौन है बत कही रहल है कि अपने माटी का जौन उर्वरा शक्ति है ओके कौने कौने तरीके से बढ़ावल जा सकत है, का जतन करल जा सकत है। तो ई कुल बात देखा अपने ये बत कही में आयल है, जमा डॉक्टर ताराचंद बैरवा जी से जौन है सतीश कुमार यादव भैया बतियोना है, आ कुल जौन है बढ़िया से पूछना है बात कि का चीज़ करे के है। देखा जैसे बात आई है माँ एक ठी कि भाई कच्ची जोन गोबर होत है वो खेते में ना डाले के चाहिए, आ नहीं तो दीमक जोन है भैया वो बढ़ जाइए।
2: लोग सोचा ना कि खेतवा हमारा उपजाऊ हो जाए गोबर
3: नहीं
2: फेंकब तो।
3: नहीं तो होला का भैया ना कि देखा ओकर भी एक खे समय है, विशेषज्ञ लोग भी कहे ना ये बात के कि भाई माटी के कहीं अपने गोबर के कहीं माटी के पास कहीं रख दा, खेते में कहीं रख दा, आ वहाँ जब ऊ बढ़िया से ठंडा हो जाई, कच्चा नर रही, तब जौन हो ऊ बढ़िया खाद हो ले। देखा भुरभुरा उम्मा मारे कीड़ा मकोड़ा चले न, घूमे न, ओके चाले न, खाना, तो जब ऊ तब निकली हाँ तो ऊ जौन हो खाद जौन बनी भैया ऊ बहुत बढ़िया बनेला। तो ये चीज़ का ध्यान तनी देवे के होई, अपने माटी में अगर गोबर का इस्तेमाल आदमी करत है तो ओ घरी। तो ये बात कही हो गई है, अब का सुनोबा अपने पंच लोगन के?
2: देखा भाई, आज के मन मनसायन में हमार देखा हेमंत कुमार श्रीवास्तव भैया का एक गौनई है,
3: ठीक है, तो
2: तो
3: एके सुनवावा, पंच लोग भी सुने, हम सुनल जाए।
2: सुनवा दो।

0: जितेंद्र
1: नंदू
0: भैया,
1: नंदू भैया
0: भैया हो देखा हेमंत कुमार श्रीवास्तव कही कितना बढ़िया पूर्वी रहल भैया देशवा हमार। आ अब एकरे बाद जो है ना अपने पंच लोगन के काल के कार्यक्रम के बारे में बतावल जाए, जेमा खेती का बात ई हुई बिहाने 6:05 पे, एमा जोन तिल्ली है ओकर खेती कैसे कैल जाए पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: देखा सांझी के जो कार्यक्रम अपन कृषि जगत को होला एमन देखा सांझी के 6:30 पर बातचीत देखा हो कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र ये
0: भैया
1: विषय पर जानकारी दी हैं इंजीनियर विनोद कुमार सिंह।
0: देखा ये जरूरी बात कही बा किसान भाई लोगन के जरूर एके सुने के है। आ देखा हो जितन भैया बोलत बतियावत ना, हमन के चले का बेला हो गल है, तो चलत है जा पंचो
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना विशेष कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रेस से, जिसे गाया है आतिफ असलम ने। संगीत है प्रीतम का, शब्द हैं समीर के।

अगला गीत है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से, जिसे गाया है आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और शब्द लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना।

संरक्षक का नाम है विंदु प्रसाद, इनकी आयु है 19 वर्ष, इनकी ऊंचाई है 5 फीट 3 इंच। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनका बदन इकहरा है, रंग सांवला है, इनका चेहरा गोल है और इनकी आंखों का रंग काला है। अंतिम बार इन्हें सफ़ेद आसमानी टी शर्ट और जीन्स में देखा गया था। इनके विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्ज़ापुर से संपर्क करें।

खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्यामा देवी, इनके पति का नाम है श्याम बिहारी विश्वकर्मा, इनकी आयु 31 वर्ष है। ये 24 अप्रैल 2026 से गुमशुदा हैं। इन्हें अंतिम बार लालगंज बाजार में देखा गया था। इनके विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें।

खोए हुए व्यक्तियों के विषय में जानकारी अब संपन्न हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

0: श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्तावों में 3 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और विंध्य एक्सप्रेस वे जैसे अहम फैसलों को सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दी गई। श्री खन्ना ने बताया कि 3 अगस्त से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे।
1: राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगा।
0: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें राज्य के उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्नातक छात्राओं में से शीर्ष 5% छात्राएं इसकी पात्र होंगी।
2: इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख वार्षिक से कम होगी। साथ ही छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, वाराणसी में 500 बेड के अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास, अग्निशमन तथा आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए के प्रस्ताव, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद ने प्रदेश में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
3: जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश की नई पहचान बनाई है।
4: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परी

0: परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन, मंदिर के CEO समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य अयोध्या पहुंचने लगे हैं। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कल होने वाली बैठक के मद्देनजर SP City चक्रपाणी त्रिपाठी और ADM City योगानंद पांडे ने आज बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन Qdenga के विपणन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के 4th दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 22,315 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमीरपुर में पिछले 24 घंटों में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही झमाझम वर्षा किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटा दी है और मौसम को भी पूरी तरह सुहावना कर दिया है। कुछ दिनों पहले वर्षा के अभाव में किसानों की बोई गई खरीफ की फसल उड़द, मूंग, तिल, अरहर, ज्वार की फसलें सूखने की कगार पर पहुंचने लगी थी, लेकिन मानसूनी वर्षा ने फसलों को जीवंत कर किसानों के चेहरों में मुस्कान लौटाने का काम कर रही है। हालांकि कहीं कहीं जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार सेठी, आकाशवाणी समाचार, हमीरपुर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी। 12 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कल भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रस रंग।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत सा गीत, फिल्म थी आ गले लग जा। संगीत था आर डी बर्मन का और शब्द थे साहिर लुधियानवी के।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी आप आए बहार आई। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार थे आनंद बख्शी।

आशिकी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। शब्द लिखे थे समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म थी आपकी कसम, शब्द लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।

कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे एक गीत 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। मीडिया वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली संसद समीक्षा, जो हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं, हाजिर हूं मैं लेकर आपका।
1: चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971

सरकार के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया।
12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश

0: सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में दो सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय

भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

26 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता पर, जिसके रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं

0: 1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्य।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रस माधुरी।

फिल्म फिजा से सुन रहे थे आप ये गीत सुनिधि चौहान और करसन सरगाथिया की आवाजों में। शब्द थे तेजपाल कौर के और संगीत था अनु मलिक का।

फिल्म ताल का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे ए आर रहमान।

सोनू निगम और सबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म मैं हूं ना से। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की, संगीत दिया था अनु मलिक ने। इसी के साथ कार्यक्रम रसमाधुरी यहीं संपन्न हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जो हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा

0: कि हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा।

0: सीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हुर्मुज़ जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी

0: निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done because just

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हिराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक

0: कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नज़र दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नज़र दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलों पर नारेबाजी कर रही थीं। रखनांदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालिका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के आते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही हैं। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़ियाफ़त और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोरदाना डॉवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थीं।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्वीपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत

0: महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क़यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा खत्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफर करेंगी। मध्य प्रदेश असेंबली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यकसां सिविल कोड यूसीसी के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में एनएचपीसी हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेरे तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर आजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकाइक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंबों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान एनडीआरएफ की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
1: ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुर्मुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुर्मुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाज़े पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज एमवी गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें जाय हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की हिफाजत सलामत

0: थी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले दो दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले तीन दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटें पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में होने वाले एफआईएच आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमना हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदे महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन लेकर हाजिर हूं मैं डॉक्टर सुकेशी ऋषभ, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं।

0: 26 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता पर, जिसके रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 23 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर श्रुति उपाध्याय और हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्य।
1: आप सुन रहे हैं अंजुमन। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।

अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। आज के कलाकार थे गुलाम अली, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह। दोस्तों, अब इसी के साथ मेरा यानी डॉक्टर सुकेशी ऋषभ का विदा लेने का वक्त हो चला है। शब्बा खैर। आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: थे आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं नमित राज और प्रस्तुति है आकाशवाणी नजीबाबाद की। कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता और साथ ही आप सुनेंगे इस हफ्ते के प्रमुख खेल समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का ये सफर बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों के साथ। खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले गए फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप की ट्रॉफी जीत ली है। रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में निर्णायक गोल दागा स्पेन के फेरान टोरेस ने। वहीं स्पेन के कप्तान रोड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 गोल दागे। तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार के विश्व कप में पहली बार कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया जो अब तक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला को इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम किया। श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला गया जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और 27 रनों से ये मुकाबला हार गई। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार 138 रनों की शतकीय पारी खेली। इस मैच में हरफन मौला खेल दिखाने वाले जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया जिन्होंने 91 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। वहीं जो रूट को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर पहली बार जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 31 वर्षीय पीवी सिंधु इस जीत के साथ ही जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। इस बार की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली भारत में आयोजित होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस 30वें संस्करण में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी 5 श्रेणियों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2009 के बाद पहली बार भारत में वापसी कर रहा है। भारतीय दल में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के नेतृत्व में 10 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। अगली खबर बॉक्सिंग से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन अंडर 19 एवं अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते। भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19

0: 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। 51 किलोग्राम भार वर्ग में चंद्रिका भोरेश पुजारी और प्राची ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 23 महिला वर्ग में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। वहीं पुरुषों में स्वर्ण पदक विजेता रहे 50 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और मुक्केबाज गंगा ने 55 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी जबकि सोर्ड मराइन मुख्य कोच की भूमिका में रहेंगे। विश्व कप के लिए उसी टीम को चुना गया है जिसे कुछ दिन पहले एशियाई खेलों के लिए चुना गया था। कुश्ती में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक अपने नाम किए। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। भारत के लिए अमन सहरावत ने 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में नेहा सांगवान ने 59 किलो और काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अंतिम पंघाल, मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीते। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इन खेलों में 126 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। बीते हफ्ते के प्रमुख खेल समाचारों को जानने के बाद आइए कार्यक्रम खेल दर्पण के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स कोच तरुण सहरावत से भेंटवार्ता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर खेल के मैदान में देश का गौरव भी बढ़ाया। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं तरुण सहरावत। मैं एक नजुवाद तहसील के एक छोटे सा गांव पड़ता चमरौला
0: जी,
1: मैं उसका निवासी हूं और मेरे फादर मुझे MBBS कराना चाहते थे। अब मेरी रुचि क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्र कंपटीशन था एथलेटिक्स का, तो महावीर PTI जी थे एक हमारे, तो मैं बोला सर मैं भी खेलने जाऊँ। बोला नहीं नहीं पढ़ाई करो।
0: अच्छा।
1: मैं चला गया। अगले दिन मैं चुपचाप वहाँ जहाँ कंपटीशन होता वहाँ गया
0: जी,
1: तो मेडल तो नहीं आया वहाँ, कोई प्लेस नहीं आई, मगर PTI ने मुझे देख लिया, बोला इधर आ तू। मेरे 2-3 रैपिड उसने साहब मारे।
0: अच्छा।
1: बस उसी टाइम ही पता नहीं क्या हुआ, मन ये किया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। गांव में नहर थी, नहर पर प्रैक्टिस करता था मैं
0: जी,
1: नहर पे प्रैक्टिस कर करके मैं अपना जिला स्तर का कंपटीशन खेला, वहाँ मेडल आए, फिर मंडल स्तर 4 जिलों में खेला वहाँ मेडल आए। तो ललक ये थी कि बस इंडिया खेलना, उस टाइम पर PTU से भागती थी
0: जी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या थी?
1: छोटा था, 6 क्लास में था।
0: 6 क्लास में थे आप, और 6 क्लास में आपने PT Usha,
1: हाँ
0: PT Usha को देख के शुरू
1: हाँ,
0: किया था।
1: हाँ PT Usha जी थी, उनके मेरे पापा उनकी कहानियाँ सुनाते थे
0: जी,
1: तो बस ये उन्हीं की देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए, कोच नहीं मिला, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा। स्टेट चैंपियन में गए, वहाँ से मैं फिर जूनियर नेशनल में मेडल दिया
0: जी,
1: उसमें गोल्ड था। फिर यूनिवर्सिटी आया खेलने के लिए, जब इंटर हो गया वहाँ से मेरा सिल्वर मेडल था।
0: तरुण जी, खेलों की दुनिया से निकल के आप सेना में भर्ती हुए
1: जी,
0: ठीक है, तो जो सेना का अनुशासन था
1: जी,
0: वो कितना काम आया खेलों में?
1: सर, जब हम फौज के अंदर गए तो कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि यार इनडिसिप्लिन टाइप रहता सिविल आदमी। जब हम वहाँ गए, हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी किया
0: जी,
1: और ट्रेनिंग में ये पता चला कि यार ये जो हम एक डिसिप्लिन में बॉडी रखते हैं, ये हमारे माइंड को भी फोकस करता, हमारी बॉडी को भी फोकस करता, तो डिसिप्लिन तो मस्ट है, उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते।
0: अच्छा, जैसे सेना में आप थे तो एक तो सेना की ड्यूटी होगी, एक आप खेल भी खेल रहे थे, तो दोनों को मैनेज कैसे करते थे?
1: ड्यूटी तो कभी कभी देनी पड़ती थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट्समैन अगर ड्यूटी देगा ज़्यादा तो फिर प्रैक्टिस में मेडल नहीं ला पाएगा। फिर भी ऐसा नहीं था कि हम फ्री सो रहे थे, हम ड्यूटी भी देते थे, कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जो हम कर सकते थे।

0: और हमारे जो बड़े सीनियर थे, कोचेस थे, उन्होंने यही सिखाया था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो
1: खोना पड़ता
0: खोना
1: है
0: पड़ता।
1: जी।
0: तो ये चीज़ें तो नॉर्मल थी कि ड्यूटी वगैरह ये तो नॉर्मल हो जाती है, मगर एक मेडल लाने के लिए जो हमारा संघर्ष था वो कड़ा था
1: बिल्कुल
0: जी। उसमें डाइट फोकस हो जाता, उसकी मेहनत हो जाती, कभी कभी ऐसा होता कि इंजरीज आ जाती हैं, कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना,
1: जी।
0: कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाना, तो उससे क्या होता था, डिस्टरबेंस तो होता था एक खिलाड़ी को।
1: जी अच्छा, आपने तरुण जी इंजरीज के बारे में बात की, चोट भी लग जाती है, तो ऐसे में हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक कहीं ना कहीं होने लगता
0: बिल्कुल
1: है,
0: सर।
1: तो उससे कवर अप कैसे करते हैं अपने आप को?
0: सर जब एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी हमें भी हो जाती है,
1: जी
0: और होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं कुछ वर्क,
1: अच्छा
0: जैसा अभी हैमस्ट्रिंग खींचने का मैटर हो जाता है कि भैया तुमने उस पर ज़्यादा लोड कर दिया इसलिए वो खींची, और एक कोई भी मसल खींचने के लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने के लिए।
1: जी
0: हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तुरंत एकदम, यार मेरा कंपटीशन आ गया। मैं भी स्पोर्ट्समैन होता क्योंकि वो मेहनत करने वाला बंदा होता है, रेस्ट कैसा करे,
1: बिल्कुल।
0: अंदर से इतना दर्द होता है कि वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ होता
1: अच्छा,
0: रहता है।
1: एक चीज़ और होती है कि जैसे
0: जी
1: एक तो अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर बीच में ब्रेक हो गया 10-5 दिन का, तो
0: जी
1: वो भी बड़ा फर्क
0: बहुत
1: हो
0: सर,
1: जाता है।
0: वो फर्क इतना पड़ता है कि अगर हमारी ट्रेनिंग 10 दिन छूट चुकी है
1: हाँ
0: तो हम 3 महीने पीछे चले जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: उस बॉडी को कवर करने के लिए हमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक लगना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी उस जर्नी की जब तक आप सेना में रहे,
0: जी
1: तो रिटायरमेंट क्यों लिया था?
0: सर, इसका एक मेन कारण ये था कि जब मैं कभी इंडिया लेवल या फिर बाहर खेलने जाता था तो अपने
1: जी
0: क्षेत्र का बच्चा बड़ा कम निकलता था,
1: अच्छा।
0: तो मुझे ऐसा लगा यार मैं अगर मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेंशन मेरी मिलने लगी है,
1: जी
0: तो यार मैं चलता हूँ और अपने क्षेत्र के बच्चों को निकालने का काम करूँगा।
1: अच्छा।
0: जी मैंने उसी के खातिर NIS किया, योगा कोर्स किया, न्यूट्रिशन का कोर्स किया कि मैं एक जब बच्चों को सिखाना जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो जो प्रॉपर मैं उसको फेस करा सकूँ।
1: NIS का आपने जिक्र किया, NIS के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना
0: जी
1: चाहेंगे हम।
0: सर, NIS होता है एक अच्छा कोच बनाने के लिए,
1: अच्छा।
0: उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि आपका कई सारे इवेंट मिलते हैं उसमें जो एथलेटिक्स के, जैसे एथलेटिक्स वाला NIS कर रहा है या फिर कुश्ती में कर रहा है या फिर किसी और इवेंट में कर रहा है, अलग
1: जी
0: अलग इवेंट के अलग अलग होते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है पूरी तरीके से, कैसे हम बच्चों को फेस करा दें।
1: अच्छा
0: हाँ 0 से बिल्कुल एकदम, जब लास्ट में 1 साल हो जाता है, टेस्ट होते रहते हैं बीच में, 1 साल का होता है या पटियाला होता है, ग्वालियर होता है, कोलकाता में भी होता है, तो मैंने जो किया था वो पटियाला किया था।
1: अच्छा।
0: पढ़ाई भी बढ़िया होती है वहाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हर एक टेस्ट को पास करना पड़ता
1: जैसे आपने कहा कि जो खेलों में प्रशिक्षण देना चाहते हैं
0: जी।
1: उनके लिए ये कोर्स होता है,
0: यस
1: तो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें,
0: सर,
1: कौन?
0: अभी तो इसमें कैटेगरी रख दिया कि आपका नेशनल में मेडल होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
1: अच्छा,
0: जी
1: मिनिमम क्वालिफिकेशन
0: हाँ,
1: नेशनल
0: नेशनल में
1: का।
0: मेडल,
1: जी
0: या फिर आप कोई ऐसा ओपन नेशनल खेल रहे हो जो हाई लेवल की गेम है और आपका मेडल भी नहीं आया, क्वालिफाई भी कर दिया तो भी आप खेल सकते हो।
1: अच्छा।
0: इसके लिए शॉर्ट भी है, 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स भी है NIS का, आप उसको कर सकते हो, उसमें भी प्लेटफॉर्म है।
1: यानी जो प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं इनका भी फिटनेस टेस्ट
0: बिल्कुल
1: होता
0: सर,
1: होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा, इस दौरान ही आपका जो ये खिलाड़ी वाला सफ़र था, जो आप
0: जी
1: बाधा दौड़ के प्लेयर हैं, तो ये भी चलता रहा कंटिन्यू
0: यस
1: साथ में,
0: जी
1: तो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव हम जानना चाहेंगे कि आपने
0: जी
1: एशियन गेम्स में परफॉर्म किया और वहाँ पे सिल्वर मेडल आपको प्राप्त हुआ,
0: जी
1: कैसा लगा ये उपलब्धि पाकर?
0: सर, मैं जब खेलने के लिए गया तो अनुभव ये रहा कि मैंने ये देखा कि यार हमारे इंडिया से बाहर का कंट्रीज़ का, वहाँ एक तो टेक्निकल फेस ज़्यादा है, सुविधाएँ ज़्यादा हैं, और दूसरा वहाँ के कोच अव्वल दर्जे के हैं। हमारे इंडिया में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या ना कि माहौल नहीं मिल पा रहा,
1: अच्छा।
0: दूसरा ट्रैक नहीं मिल पा रहा किसी फील्ड पे जाने के लिए। अभी मैंने एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है
1: जी
0: जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस एथलेटिक्स की, एथलेटिक का फिजिकल फिटनेस होती है वहाँ,
1: अच्छा
0: जब आप अच्छे लेवल का फिजिकल फिटनेस करोगे तभी तो किसी गेम में जाओगे,
1: हाँ बिल्कुल
0: उसका टेस्ट होते रहते, स्किल टेस्ट, स्पोर्ट्स के, रनिंग के हों चाहे फिर किसी भी चीज़ के हों, तो फिर डिसाइड होता है कि भैया इसको इस गेम में उतारा जाए। 100

0: 100% रिजल्ट देगा।
1: तो क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप वहाँ, क्या क्या कराते हैं बच्चों को?
0: सर मैं वहाँ बच्चों को एथलेटिक्स का ऑल गेम कराता हूँ
1: जी।
0: जितने भी गेम है, चाहे वो जैवलिंग हो, लॉन्ग रेस हो, 100 मीटर हो, हर्डल्स हो, या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, सबका हम बढ़िया से उनको
1: जी
0: इवेंट वाइज जो प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरा फिजिकल फिटनेस बहुत अव्वल दर्जे का, हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जो अभी फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की हो गई
1: अच्छा अच्छा
0: या आर्मी की हो गई, उनको भी तैयार करते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, जो बड़े बच्चे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट खेलने जा रहे हैं, या जिला स्तर में गोल्ड मेडल है, जो स्टेट में मेडल है, नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे भी हमारे पास हैं।
1: आगामी अगस्त में
0: जी
1: आपका सिलेक्शन हुआ है दक्षिण कोरिया में
0: जी
1: वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी?
0: सर, काफ़ी ज़्यादा तैयारी उसके लिए मेरी, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे में वर्क कर रहा हूँ सर।
1: अच्छा।
0: बिजनौर हमारा भी कच्चा ट्रैक है, वहाँ से मुझे स्पीड वर्कआउट करने के लिए, हर्डल्स पे वर्कआउट करने के लिए मैं हरिद्वार जाना पड़ता है मेरे को,
1: अच्छा।
0: हफ्ते में 3 डेज। एक सेक्शन मैंने रखा इवनिंग का, मैं यहाँ से बिजनौर से 11 बजे निकलता हूँ, और फिर हरिद्वार थोड़ा रेस्ट करके, और फिर मैं ट्रैक पर 3 बजे या 4 बजे जाता हूँ, 8 बजे मैं वर्कआउट करके फिर वापस आना पड़ता है बिजनौर।
1: अच्छा, ये डेली को डेली का
0: हाँ,
1: रूटीन है
0: हफ्ते में
1: आपका?
0: 3 दिन
1: हफ्ते में 3 दिन।
0: जी।
1: अच्छा।
0: और उसमें क्या ना, देखो ऐसा ना, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत खर्च होता है भाई, बहुत ज़्यादा। आपके शूज़, आपके स्पाइक्स, आपकी किट महंगी आती हैं बहुत, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं हमारे पास
1: जी।
0: कि उनको डाइट नहीं मिल रही, मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट है। तो हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा जिला स्तर में या फिर मंडल स्तर में मेडल आता है स्टेट स्तर में, उनको कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई डाइट प्रोवाइड करा दो, क्या क्या खाना, जैसे एक साईं की डाइट चलती है प्रॉपर फेज में, उनको दिलाओ, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रैक अच्छा होना चाहिए।
1: सही बात है। प्रतिभा देखिए हर क्षेत्र में है, लेकिन सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही सुविधाओं की ज़रूरत है। एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है कि जैसे आजकल बच्चे स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं खिलाड़ी, तो वो कितना सही है और उसके क्या प्रभाव
0: जी
1: पड़ते हैं बॉडी पे?
0: सर, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है,
1: जी।
0: मैं भी सोचने वाला था, इसको बताने वाला था। ये जो एक अभिशाप है स्पोर्ट्स में, हमारे बच्चे जो ये स्टेरॉयड वगैरह ले रहे हैं ना, दे कौन रहे आप, पहले तो ये जो स्टेरॉयड, अगर ये सक्सेस होता तो भारत सरकार क्यों बंद करती इसको? ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे स्पोर्ट्स को ख़त्म कर रहा है
1: खत्म कर रहा
0: जी। तो ये बहुत गलत है और मैं इसके हमेशा विरोध में खड़ा रहूँगा
1: है।
0: कि ना हो। अच्छी अपनी डाइट खाओ, घर का खाना बहुत अच्छा खाओ, ट्रेनिंग स्मार्ट तरीके से करो।
1: जी, तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। जड़ पे काम करना ज़रूरी है। कोई भी समस्या तभी ख़त्म हो सकती है जब हम उसकी
0: बिल्कुल
1: जड़ पर काम करें।
0: जी
1: एक लास्ट क्वेश्चन
0: जी जी
1: और मैं लेना चाहूँगा कि जैसे हमारा क्षेत्र बिजनौर है,
0: जी
1: छोटा ज़िला है
0: जी
1: और प्रतिभा की कमी नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: तो अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को क्या गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप?
0: मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को यही गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई कि गलत राह पर चलो मत, और भैया मेहनत करो। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे स्टेरॉयड का, उसे तो यूज ही मत करो, उसको यूज करोगे आपके फेफड़े, आपके लीवर, ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मेहनत करो बस, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है सर। साथ में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, हमारा जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, तो मैंने उस यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूँ, और हर गांव-गांव जाके
1: अच्छा।
0: पेरेंट्स को समझाया जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ, तो इस चीज़ का फेस कर रहे हैं। दूसरी बात थी जो अभी बताई थी हमने कि भैया स्टेरॉयड नहीं लेना, उस पर भी हम विचार करते हैं और घर वालों को भी समझाते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बच्चे जो हैं, माँ बाप परेशान हैं उनसे कि यार
1: जी
0: हमारी सुनते नहीं हैं।
1: जी मतलब ये ऐसे युवाओं की बात आप कर रहे हैं कि जैसे
0: यस
1: जो एक तो बेरोजगार हैं,
0: हाँ
1: पढ़ाई
0: यस
1: लिखाई कम
0: बिल्कुल
1: की है
0: बिल्कुल
1: और ज़्यादातर नशाखोरी की तरफ बढ़
0: यस
1: रहे हैं।
0: यस। अगर हमारा यूथ सही चलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा जो समाज की ग्रोथ बदलेगी, सभ्यता चेंज होगी, हमारे अगली पीढ़ी मजबूत होगी
1: अगली पीढ़ी मजबूत होगी।
0: जी।
1: बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्रिमिनेलिटी भी बढ़ेगी।
0: यस बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: तरुण जी, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया और अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामना है कि आपके मार्गदर्शन में और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
0: धन्यवाद सर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं नेपाल और भारत के बीच खेली गई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी श्रृंखला में भाग लेने वाले कबड्डी खिलाड़ी तनिष कुमार से भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण में आज हमारे साथ हैं युवा कबड्डी खिलाड़ी तनिष। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तनिष।
1: धन्यवाद सर।
0: तनिष, भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय सीरीज हुई थी कबड्डी की, उस कबड्डी टीम के आप प्लेयर हैं, लेकिन सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रो चाहेंगे।
1: सर, मैं मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज नजीबाबाद जिला बिजनौर का स्कूल का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। मुझे 8th क्लास से ही कबड्डी खेलने का शौक हो गया था। स्कूल में बहुत से लड़के कबड्डी खेलते थे, जो शुरू में डर लगता था कबड्डी की, मेरी पैर हाथ नहीं टूट जाए डर लगता था इस वजह से। फिर जब मैं उसमें फोकस करा तो फिर मेरा डर भागा। फिर हमारे स्कूल में GIC वर्सेस MDS के स्कूल के टीम का मैच हुआ और हमने उसमें पहला स्थान पाया। जब से मुझे बहुत शौक लगा कबड्डी खेलने का।
0: अच्छा तनिष, कबड्डी खेलने का आपको शौक है और आपने, जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि स्कूल लेवल से आपने शुरू किया और 8th क्लास से शुरू किया, तो ये जो द्विपक्षीय सीरीज हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताइए।
1: सर, मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेन कबड्डी प्लेयर मेरा दोस्त विवेक है।
0: अच्छा।
1: तो उसने मुझे बताया हापुड़ में ट्रायल चल रहे हैं
0: जी,
1: वहाँ पर एक कोच थे अरुण कुमार सर, उन्होंने ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन के होने के बाद मेरा इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं राइट कॉर्नर रहा हूँ।
0: तनिष, टूर्नामेंट में जैसे हम गए नेपाल, तो आप पहली बार इंडिया से बाहर गए होंगे।
1: यस सर।
0: कैसा महसूस हुआ?
1: सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इंडिया में पहली बार गए, इंडिया से बाहर जाते जब बॉर्डर से गुजर रहे थे, कुछ अलग सी फील आ रही थी।
0: अलग सी फील आ रही थी, डर भी लग रहा होगा।
1: जी सर जी।
0: अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए थे दोनों टीमों के बीच में?
1: सर, दो मैच हुए थे, वो तीन, सॉरी सर, तीन,
0: तीन तीन मैच हुए
1: जी,
0: थे,
1: जिसमें दो मैच जियो जीत जाती है उसका फाइनल था।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: यानी दो मैच नेपाल ने जीते और एक मैच इंडिया ने जीता। अच्छा, कबड्डी का आपको शौक है तनिष, तो आपने बताया कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को और कबड्डी को कैसे मैनेज करते हैं?
1: सर, सुबह में मैं रनिंग करने जाता हूँ, जो कि मेन है कबड्डी के लिए
0: जी,
1: कि जिसकी वजह से सांस ना फूले। 40 मिनट का गेम होता है कबड्डी का।
0: हुँ.
1: और शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने ग्राउंड पे जाता हूँ, ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ 3 घंटे। तीन घंटे प्रैक्टिस करने के बाद शाम को करीबन 9 बजे से लेके 10-10:30 बजे पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी कोच के अंडर में कर रहे हैं?
1: सर, कोच के अंडर में मैं JD अकेडमी में करता था, पर अभी गर्मी की वजह से मैं वहाँ पर नोएडा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से घर पर ही कर रहा हूँ।
0: तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आगामी जो 1-2 साल में अपने आप को, क्योंकि अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है तनिष, तो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
1: सर, बस इंडिया की तरफ से खेलने का सपना है मेरा सर, इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है।
0: इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है। चलिए, थोड़ा सा हम अपनी बात को आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। देखिए, जो भी श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं तनिष
1: जी,
0: तो वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि खिलाड़ी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की मेहनत आपकी कैसी रही। तो जब आपको पता चला कि आप द्विपक्षीय सीरीज जो नेपाल के साथ इंडिया की हुई उसमें आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बाद तैयारी के लिए कितना वक्त मिला था आपको?
1: सर, मुझे करीबन 1 महीने के समथिंग मिला था, जिसमें मैंने अपने पूरे 100% दिया। सुबह भी शाम भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं। फिर मैंने सर थोड़ी सी टाइम के लिए पढ़ाई रोक दी थी।
0: अच्छा
1: जी सर। फिर मेरे क्लास टीचर बोल रहे थे तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये वो है। मैंने सर अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रहे हैं, सर ने चलो कर लो। हमारे PTI सर हैं आलोक सर, वे भी हमें बहुत सोर्स करते हैं स्पोर्ट्स के लिए।
0: अच्छा, तो पूरी तैयारी की, आपको 1 महीने का समय मिला, उसका पूरा आपने सदुपयोग किया और
1: जी सर,
0: जी जान मेहनत की। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो एक टूर्नामेंट की बात रही, इसके अलावा आपने कुछ मंडल स्तर पे खेला हो या नेशनल वगैरह खेला हो?
1: हाँ सर, हमारे स्कूल से स्कूल की टीम गई थी सर, वहाँ से किरतपुर से नांगल जट से अमरोहा, अमरोहा में जाकर मंडल स्तर खेलता है अमरोहा में, तो अमरोहा में जाके अमरोहा की टीम फाइनल हुई थी। पर उसमें मेरा सर सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पे कुछ ऐसा कारण हुआ कि मैं जा नहीं सका
0: मंडल स्तर के लिए।
1: जी।
0: अच्छा तनिष, जैसे देखिए कबड्डी का जो ये गेम है, इसमें चोट भी काफ़ी लगती है।
1: जी सर।
0: तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब इतनी ऐसी चोट लगी कि आपने सोच लिया छोड़ ही दूं कबड्डी?
1: जी सर, इंजरी की बात मैं स्कूल में ही बता रहा हूँ। मैं स्कूल में बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था।
0: अच्छा
1: जी सर। तो मेरे गोड में इंजरी आई थी बहुत तकड़े वाली, तो मैंने ये तक बोल दिया था आज के बाद कबड्डी नहीं खेलूंगा।
0: अच्छा।
1: फिर सर 3 दिन बाद फिर दोबारा खेलने चालू कर दी। फिर 3 दिन बाद जिन बच्चे ने मेरी इंजरी करी थी उन बच्चों के ऊपर ही टैकल पॉइंट करे मैंने।
0: बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमारा, कि इंजरी को हमने

0: बहाना नहीं बनाया कोई और उससे हम उबर कर वापस आए। एक बात मेरे जहन में अभी आ रही है कि कबड्डी ही क्यों?
1: सर कबड्डी शुरू से फेवरेट स्पोर्ट्स है। छोटा सा था मैं सर, करीबन मान के चलो 9 साल तक का। तो मेरी एक दीदी है वहाँ पर, तो उनके समूह के संथिंग जो ना, मैं सानपुर ये यहाँ
0: जी
1: पर कबड्डी खेलना,
0: जी
1: यहाँ
0: जी
1: से ही फर्स्ट आया था प्राइस मैंने।
0: अच्छा।
1: जब से और भी ज़्यादा लगन लगी, फिर स्कूल में कबड्डी खेलने लगी।
0: तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कबड्डी
1: जी
0: में आया। तो परिवार का कितना सपोर्ट है इसमें?
1: सर, परिवार का भी सपोर्ट है, पर घर वालों को भी डर लगता है कि कहीं बच्चा चोट फिट ना खा ले, इसलिए पापा भी थोड़ा मना करते थे कबड्डी मत खेलो, पर मैंने फिर भी छुप छुप के खेली।
0: अच्छा, एक कबड्डी का प्लेयर होने के नाते अगर मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करूं, तो कबड्डी में अगर कोई सफल होना चाहता है बच्चा, तो क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा?
1: सर पहले फोकस करना, कबड्डी पे फोकस करो और अपनी मेहनत में लगे रहो। ये मत सोचो कि मेरे से खिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा जब मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है सर।
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, तो लंबाई का कितना फ़ायदा मिलता है?
1: सर लंबाई के लिए एक तो रेडर ही फ़ायदा देता है, क्योंकि ग्राउंड अलग अलग टाइप के होते हैं। सीनियर का ग्राउंड लंबा होता है, जूनियर ग्राउंड छोटा होता है, तो रेडर का फ़ायदा लंबाई से बहुत ज़्यादा होता है
0: अच्छा,
1: कि रोकना मुश्किल हो जाता है रेडर को।
0: रेडर को
1: जी
0: यानी लंबाई का कहीं
1: जी
0: थोड़ा सा
1: सर
0: इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है
1: जी
0: खेल
1: जी
0: पे।
1: सर जी
0: अच्छा, थोड़ा सा हम बात इस बारे में करेंगे कि जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका, वहाँ पे क्या कैसा माहौल रहता है, किस तरह से सिखाते हैं कोच? जैसे सपोज़ आप यहाँ पर थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कबड्डी के बारे में आपको नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जाके आपका अनुभव कैसा रहा, कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, स्ट्रेटेजी सीखने को मिली?
1: सर कोच हमारे मतलब हर चीज़ बताते थे। मुझे जो ना राइट कॉर्नर पर चैन मारने नहीं आते, जैसे बोलते हैं कि रेडर को रोके कैसे जाए, मतलब कवर कवर की कोई गलती नहीं होती, कवर को दिखाना दिखाना होता है।
0: अच्छा
1: तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाई कैसे लगती है, अपने हाथ से हाथ पकड़ के सिखाई।
0: अच्छा
1: माई बेस्ट कोच मैं उन्हें मानता हूँ सर।
0: अच्छा एक बेहतर कबड्डी प्लेयर बनने के लिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जो मतलब आप सोचते हैं कि
1: सर
0: एक एक खिलाड़ी को मिलनी ज़रूर चाहिए?
1: सर कबड्डी प्लेयर को तो ऐसी बात है सर, डाइट पर अपना फोकस देना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा।
1: ये खेल जान गई है, जब वो शरीर में जान नहीं होगी तो बेकार है खेलना।
0: तनीष, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। आपने आज बताया कि आपकी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन देखिए सपने बड़े होने चाहिए श्रोताओं, तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। तनीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। आलेख एवं वाचन स्वर नमित राज का था और प्रस्तुतकर्ता थे अंकित सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार हुआ और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: खेल दर्पण।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गायन। कलाकार हैं पंडित चितरंजन ज्योतिषी, राग है जोग। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तपन बैनर्जी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित चितरंजन ज्योतिषी का गायन। राग था जोग। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तपन बैनर्जी। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जो हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा।